ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

0: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 10 ब्रेडफोर्ड 7230300

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call

0: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
2: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot, search Let's Save Water.
8: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है. शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं. बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं. मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: जाऊं।
1: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज, ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन, मदद चाहते हैं अब से लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन है। फिर 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त संडा रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना अलका याग्निक और उदय नारायण की आवाजों में। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:15, यानी कि 11:15। तो जनाब चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। नदीम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके प्रोग्राम की इब्तदा में ही। तो जनाब ये सुन के अच्छा लगा कि आप सुन भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और फिर हमें भी मज़ा आएगा प्रोग्राम करने का कि हमारा भाई सुन रहा है और प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहा है। तो जनाब जो प्यारा सा गीत है कुमार सानू की आवाज़ में, आपके नाम करूँगा, 3-4 गीत आपके नाम होंगे जनाब, क्योंकि आप हमारे प्रोग्रामों में, बल्कि सनराइज के जितने भी ऑन एयर प्रोग्राम होते हैं उनमें आप आते हैं और सही जो है वो प्रोग्रामों को आप जो है वो उनमें 4 चांद खूबसूरती के लगाते हैं, अपनी प्यारी सी आवाज़ का जादू जगाते हैं और हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से। तो फिर जाहिर है कि हमारा भी हक बनता है जब गीत लगे तो आपका नाम उनके साथ ज़रूर जोड़ें। तो जनाब आपका बड़ा बेचैनी के साथ इंतज़ार रहेगा 12 बजे की खबरों के बाद जब लाइव कॉल्स होंगी। तो जनाब नदीम मंसूर साहब आपके नाम गीत होगा, और आपके साथ साथ तारिक जुल्फी साहब, हीरा साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम होगा जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day.
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू की मत भरी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और तारिक जुल्फी साहब, फोन करने का शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, स्पेशली हीरा खान और मलिक इश्तियाक साहब के लिए, तो उनके नाम भी ये गीत करते हैं। और उसके बाद नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करते हैं, क्यों आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो जुड़े रहिएगा। और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करते हैं।

0: मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, तेरे नाम से दिल धड़कने लगा है। कमल सानू और अलका याग्निक की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए। जनाब हीरा खान साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, स्पेशली जनाब तारिक साहब, तारिक जुल्फी साहब के लिए, उनके नाम भी करेंगे और उसके बाद नदीम मंसूर साहब और मुना जी आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा और याद रखिए कि डेडिकेशन का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक है। 12 और 2 के दरमियान आपके लिए लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, मस्ती भरा गीत था। और इस मस्ती भरे गीत को सुन के एक और मस्ती भरा गीत सुनने को मन कर रहा है जनाब। तो आप दोस्तों के नाम करते हैं इस मस्ती भरे गीत को। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम लता जी की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। इंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। लता जी और साथियों की आवाजों में। और अब जनाब अयूब चौहान साहब फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं हंसने क्यों लगा हूं। ऐसी इस बात की आई कि जब मैंने बड़े खलूस से प्यार से मोहब्बत से उनकी कॉल ली, तो मैंने सोचा ये लता जी का शायद मस्ती भरा गीत है। इस तरह के गीत जो है ना अयूब चौहान साहब बड़े पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कहेंगे कि यार अच्छा गीत है, मेरा नाम इसके साथ जोड़ देना। लेकिन उल्टा हुआ जनाब, उन्होंने कहा यार कोई अच्छा सा गाना मेरे नाम भी कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ जो गाने मैंने प्ले किए वो अच्छे नहीं थे। अच्छा, ओ हो, दिल ही तोड़ दिया जनाब। तो अयूब चौहान साहब शुक्रिया। अभी क्योंकि मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ नदीम मंसूर साहब के साथ कि रफ़ी साहब का गाना, पर्टिकुलर गाना जो अभी प्ले करने जा रहा हूँ, मैंने कहा था ये प्ले करूँगा, तो इस वजह से वो गाना मुझे प्ले करना ही करना है जनाब। और अयूब चौहान साहब उम्मीद रखते हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगेगा। रफ़ी साहब का गाना है। तो अयूब चौहान साहब, आपके नाम हीरा खान साहब, ताजुल्फी साहब, नदीम मंजूर साहब और दीगर दोस्तों के नाम करूँगा। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:44 से, यानी के 11:44। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। जनाब कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे रफ़ी साहब को, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद संदा रेडियो के संग। और याद रखिए 12 बजे तक ही डेडिकेशन है। अगर आप कोई डेडिकेशन देना चाहें तो अभी से दीजिएगा, क्योंकि 12 के बाद प्रोग्राम के जो दो हिस्से बचते हैं आखिरी, वो दोनों लाइव कॉल्स के होंगे, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों फिर डेडिकेशन नहीं होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी। अगर रिक्वेस्ट करनी है या डेडिकेशन देनी है तो अभी दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने रफी साहब की आवाज में सोज भरा गीत सुना जनाब। अब कोई थोड़ा मस्ती भरा गीत होगा तभी जाके जनाब मूड ठीक होगा। तो रॉकी बहना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, फोन करने का आप अपने बच्चों के लिए वारिसा, यासर और साहिल के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे। शुक्रिया एक बार फिर रॉकी बहना फ़ोन करने का। और इसी गीत को अयूब चौहान साहब, हीरा खान साहब, तारिजुल्फी साहब, नदीम मंसूर साहब और दीगर तमाम जो दोस्त हैं उन सब के नाम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। आप कोई डेडिकेशन नहीं होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्राम संडे के प्रोग्राम के दो हिस्से जो आखिरी हिस्से होते हैं 12 और 2 के दरमियान, ये सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स के हिस्से होते हैं जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। इसमें कोई डेडिकेशन नहीं होती, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती। तो जो दोस्त शायरी का शौक रखते हों या गीत गुनगुनाने का शौक रखते हों तो जरूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। जैसा कहे प्रोग्राम को शुरू करते वक्त, हिट ऑफ द आवर प्ले करते वक्त हम कहते हैं कि जनाब जो हिट ऑफ द आवर का गीत है तमाम दोस्तों के नाम करते हैं, तो आज भी सभी सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत करेंगे कुमार सानू की मत भरी आवाज़ में। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में खबरों के करीब थे जब हम, तो हमने कहा था हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई हैं जिनमें जनाब अयूब चौहान साहब और एम खान साहब दोनों जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हिट ऑफ द आवर के बाद इन दोस्तों से मिलेंगे, इन्हें सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना कुमार सानू की मत भरी आवाज में। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:12, यानी कि 12:12, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जनाब अयूब चौहान साहब मैनचेस्टर से और आयम खान साहब ब्रैडफोर्ड से। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद इन दोस्तों से मिलते हैं।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300,
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
5: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
6: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
5: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
6: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिनार रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास। 24 hours a day.
0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, लाइव कॉल का सिलसिला आप शुरू करने लगे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयूब चौहान साहब और एम खान साहब। तो चलते हैं जनाब, पहले तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम, जी एन यू, सत बिस्मिल्ला कहेंगे अयूब चौहान साहब को। अयूब चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
7: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
7: मैं ठीक ठाक हूँ, बस आपकी बातें सुन रहा हूँ।
0: अच्छा जी,
7: आपकी हंसी भी सुन रहा हूँ।
0: कौन सी हंसी? मैं तो हंसा ही नहीं अभी।
7: जो गाने के वाले से आपने कह रहे थे।
0: अच्छा, जो आपने इतनी स्वीट सी बात की थी, हमें बताया कि गाने अच्छे नहीं प्ले कर रहे हैं, कोई अच्छा सा प्ले करें, उस बात पे
7: नहीं। वो देखें वो गाने लाखों करोड़ों गाने हैं, यानी कि वो जिन्होंने बनाए होते हैं, म्यूजिक दिया होता है, लिखने वाले ने लिखा होता है, गाने वाले ने गाए होते हैं, वो जो उन लोगों ने बेचारों ने बहुत मेहनत की होती है, ठीक है कि नहीं?
0: वो तो सच्ची बात है, उसमें कोई शक ही नहीं।
7: जो हम लोग होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, जो आप जो मुझको गाना पसंद होता है वो आपको नहीं पसंद होता, जो आपको पसंद होता है वो किसी और को अच्छा लगता है। बस ये दुनिया ऐसी है, तो सब चीज मूड पर होती है। तो मुझे पता कि आपने मुझे एक दफा डराया भी था कि आप किसी ककराटी मैन को जानते हैं, मैं इसलिए आपके साथ इतनी बहस नहीं करता, मुझे आपसे बातें करते हुए भी बहुत डर लगता है।
0: तो बस अखबार तोबा अस्तखबार, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ या गैंगस्टर जो है उनके साथ मेरा वास्ता है और मैं लोगों को मरवाता हूँ, उनकी पिटाई करवाता हूँ। यार क्या सवेरे सवेरे ये बात कर दिया। नाश्ता किस चीज के साथ किया था आपने?
7: ये मुझे क्या पता आप गैंगस्टर है या मेरी तरह बहुत शरीफ में
0: नहीं। एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल बेशक ब्रैडफोर्ड में हूँ, आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते?
7: मैं खाली रेडियो के हवाले से जानता हूँ और नहीं जानता।
0: वैसे मेरे साथ मिले हुए नहीं है आप?
7: वो आप जो मिले, जो देखने में होता है, वो इंसान ऐसा नहीं होता ना।
0: तो इसका मतलब ये कहने का है आप मुझे गैंगस्टर समझते हैं, बुरा बंदा समझते
7: नहीं,
0: हैं?
7: मैं गैंगस्टर नहीं समझता, लेकिन
0: तो यही तो कहा मैं डरता हूँ आपसे बात करते हुए, क्योंकि
7: डरता तो हूँ ना, क्योंकि आपने एक कहा था आप किसी कराटी मैन को
0: तोबा यार ये क्या आज सवेरे सवेरे अयूब चौहान साहब ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रात को नींद ठीक आई थी आपको?
7: मुझे जरूरत से ज्यादा नींद आई थी रात को।
0: अच्छा मतलब
7: अभी भी मेरी आंख पूरी तरह खुली नहीं है।
0: इसीलिए आज जिन्हें आप गुनूदी में है ना, तो इसलिए जब गुनूदी में बंदा होता है तो फिर इस तरह की बातें ही करता है। अब मैं समझा, मैं भी सोचूं यार इतना समझदार बंदा है ये क्या कह रहा है, और मुझे इतना प्यार करता होता है और हर बार ऑन एयर सबको पता है कहते होता है कि मैं आपका इंतजार करता हूँ, बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार करता हूँ, कब इतवार आएगी फिर आपसे बात होगी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको पसंद। यार आए तो आपने कमाल ही कर
7: दिया। मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ, अगर मेरे नजदीक होते तो इधर बोसा देता उधर बोसा देता।
0: लेकिन वो फिर बात वही आती ना कि डर की वजह से।
7: नहीं डर की वजह से प्यार से।
0: तो ऐसा करो भाभी को बोलो पानी का जग भर के लाए और आप पे वो छींटे फेंके ताकि आपकी आंख खुले और आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ।
7: नहीं वो तो मेरी समझ में आ गया कि आप जो कहते हैं ना, मैं इतना ना समझ भी नहीं हूँ कि आपकी बातें ना सुनूं, वैसे भी मैं कैसे कैसे हो सकता कि आपकी बातें ना सुनूं।
0: नहीं बातें तो सुन रहे हैं लेकिन ये जो कह रहे हैं ना वो ठीक नहीं कह रहे हैं।
7: क्या करूं मैं सच बोलता हूँ ना, मुझे सच बोलने की आदत है।
0: नहीं इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ।
7: नहीं मैंने ये कब कहा मैं,
0: तो आप बोलते हैं मैं सच अच्छा बोलता हूँ, फिर वो आप डबल बात कर जाते हैं ना, क्लियर बात करें ना, क्लियर करें एक बात पे रुके।
7: चलो मैं कहता हूँ मैं झूठ बोलता हूँ, आप खुश हैं?
0: नहीं मैं तो पहले ही खुश था, थोड़ा आपने मुझे जो है वो नहीं कंफ्यूज नहीं किया, मैं परेशान हो गया कि मेरा भाई आज बैकी बैकी बातें करता है, क्यों कर रहा है।
7: तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसा करें कि आप
0: नहीं ये बात क्लियर करें, पहले क्लियर करें आप मुझे डर से बात करते हैं या मुझे प्यार से बात करते हैं मेरे साथ।
7: लेकिन आज मैं आपसे प्यार से बात करूंगा।
0: तो वैसे प्यार से बात नहीं करते होते हैं जब प्रोग्राम में आते हैं?
7: कभी कभी वो होता है किसी और मूड में।
0: अब मैं समझ गया जनाब, आज अभी मैं समझ आ गई, बड़ी देर बाद समझ आई कि सवेरे सवेरे आज भाभी ने नाश्ता खूब दिया आपको, और ऐसा नाश्ता दिया कि आपका सर घूम गया है और इसलिए उल्टी सीधी बातें निकल रही। अच्छा, अब समझ आई मुझे, बड़ी देर बाद समझ आई, बड़ी देर बाद समझ।
7: आप इन बातों को छोड़े मेरी शायरी सुने।
0: अच्छा सुनाए ना फिर, ये उल्टी सीधी बातें ना करें, आमिर खान साहब भी सुन रहे होंगे।
7: मैं आपको आते थोड़ा सा छेड़ता ना तो क्या करता?
0: नहीं छेड़ा ना करें ना, क्यों मैं कोई बम्बल बीज थोड़ा हूँ।
7: नहीं वो भी तो नहीं, देखो आपने थोड़ा सा छेड़ दिया तो आपने इतनी बातें कर।
0: नहीं मुझे तो परेशान कर दिया आपने, मैं तो परेशान हो गया कि यार ये मैं ये किधर से मुझे गैंगस्टर बना दिया इन्होंने। और
7: नहीं वो कभी कभी ऐसा होता है ना गाना, वो एक मोहतरमा लास्ट हफ्ते आई थी वो गाना उसने गाया था, वही आंख नहीं पता नहीं भूला
0: साथी, वही आंख नम
7: जबरदस्त गाना था,
0: कोई भूला साथी याद आया।
7: वो आपके
0: सिस्टम और सीमा जी ने गाया था, मुझे याद आ गई एक बार
7: यार। तो फिर मैंने अपने मोबाइल से कहा वो ये गाना मुझे सुना दो, तो फिर उसने मुझे सुनाया तो मुझे बड़ा मजा आया था, गाने बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा,
7: तो उनकी आवाज अच्छी होती है ना।
0: अच्छा अच्छा,
7: तो अब मैं कुछ शायरी सुना देता हूँ। कम टू सीरियस नाउ, सीरियस टेबल, कम टू ऑन सीरियस टेबल।
0: अच्छा
7: अच्छा, ये वसी शाह साहब की है।
0: अच्छा,
7: अब जो लोटे हो इतने सालों में, धूप उतरी हुई है बालू में, तुम मेरी आंख का समुंदर में, तुम मेरी आंख के समुंदर में, तुम मेरी रूह के अजालू में, फूल ही फूल खिल उठे मुझ में,
0: वाह
7: कौन आया मेरे ख्यालों में,
0: वाह
7: मैंने जी भर के तुझको देख लिया, तुझको उलझा के कुछ सवालों में।
0: वाह वाह वाह क्या बात है,
7: क्या वर्क का चयन किया मैंने,
0: वर्क तो चेंज कर दिया आपने
7: जी,
0: वर्क तो आपने चेंज कर दिया।
7: मेरी खुशियों की कायनात भी तू ही दुख दर्द के अवालों में,
0: हाय हाय
7: जब तेरे जब तेरा दोस्तों में जिक्र आया मैं ताश उठती है दिल के छालू में।
0: ओए होए
7: तुमसे
0: चीज उठती है दिल के छालू में
7: तुमसे आबाद है ये तनखाई तुम ही रोशन हो घर के जालू में।
0: वाह
7: सांवली शाम की तरह है वो ना गोरू में है ना कालू में।
0: वाह वाह
7: क्या उसे याद आ रहा हूँ वसी क्या उसे याद आ रहा हूँ वसी रंग उभरे हैं उसके गालू में।
0: वाह वाह क्या बात है।
7: तो ये तो शायरी थी तो अब लतीफों की तरफ चलते हैं। पहले कि मैं कुछ भूल जाऊं चौधरी मुजफ्फर साहब है चौधरी फरियाद साहब है और भी जितनी आपकी सनराइज की फैमिली हो हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम
0: जी।
7: तो आते ही आपसे थोड़ा सा चेयर कर लिया मुझे भी खुशी होती है आपसे थोड़ी सी बातें कर।
0: अच्छा ऐसी गलत बातें करके आपको खुशी होती है यार क्या बात है।
7: अच्छा
0: मुझे लगता है ओल्डमा नहीं पड़ेगा
7: जी
0: ओल्डमा नहीं पड़ेगा
7: नहीं मैं आ जाऊंगा बैठो ऐसी
0: कर। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर आपको मैं कॉफी पिलाऊंगा खाना खिलाऊंगा।
7: अच्छा अच्छा ठीक हाँ। है मैंने कहा काठी मैन के साथ पास ले जाएंगे।
0: अच्छा ठीक है लतीफे सुनाए यार लतीफे साहब।
7: अच्छा मैं लतीफा सुनाता हूँ। एक घर में चोर गए साए इस घर में एक लड़का जाग रहा था।
0: अच्छा
7: जब चोर सामान लेकर जाने लगे तो लड़का बोला मेरा बस्ता लेते जाओ वरना मैं अम्मी डैडी को जगा दूंगा।
0: अच्छा
7: एक और है ये लतीफ साहब है जनाब कल एक सियासतदान कह रहे थे कि अनकरीब दुनिया का नक्शा बदलने नहीं है नहीं लतीफ साहब यार एक दोस्त ने मेरी बड़ी बेइज्जती की आज एक दोस्त ने मेरी बड़ी बेइज्जती की ताहिर वो कैसे लतीफ वो मुझसे पूछने लगा तुम्हें गाना आता है ताहिर मगर उसमें बेइज्जती की वाली कौन सी बात है लतीफ भाई उसने ये बात काफी देर मेरा गाना सुनने के बाद की।
0: अच्छा अच्छा
7: समझ आ गई ना
0: समझ आ गई।
7: अच्छा इसलिए मैं आपको गाना नहीं
0: नहीं नहीं आप जनाब कुछ लतीफा सुनाए समझ क्यों नहीं आती।
7: अच्छा एक साहब स्विमिंग पूल के ड्रॉइंग बोर्ड पर चढ़कर दोनों बाजू फजा में बुलंद करके स्विमिंग पूल में चलंग लगाने वाला था कि एक शख्स चलाया चलंग मत लगाओ जनाब स्विमिंग पूल में पानी नहीं है।
0: अच्छा
7: कोई बात नहीं वो साहब इत्मीनान से बोले मुझे कौन सा तैरना आता है।
0: सही
7: तो ठीक है जी
0: ठीक है सर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी अल्लाह आपको सलामत रखे
7: जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी
0: वेंसडे इंशाल्लाह वेंसडे ठीक है।
7: वो क्या होता है कि दोस्तों को हमेशा आप तो हमेशा याद ही रखते
0: हैं। वो तो है ना वो तो है ठीक है
7: ठीक
0: है ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे अजीब चौहान साहब जनाब ओल्डम से ढेर सारी तालियां उनके लिए और तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी एनु कहेंगे जनाब एम खान साहब को। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
8: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हजरत मैं आपको आपके साहब को जितने सुनने वालियां हैं सुनने वाले हैं
0: जी
8: आज की निस्बत की आखिरी नदी का जुलूस लेकर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: जी जी
8: अल्लाह ने ये नियमतें हमें अता फरमाई तो अल्लामा इकबाल के कलाम की तरफ मैं आप सब सुनने वालों को की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं किस जबान से गुले पुरमुजदा तुझको किस तरह

नमो सरे नाम उठा माफी जा नाम उठा सहने गुलस तामे।

0: सुबह को इकरार था, बाग तेरे दम से गोया तलबाए अत्तार था। मियां साहब जी मजलिस विच आपने सारे तवज्जो ताना
1: जी जी
0: मियां साहब इरशाद फरमांदे ने इस खूनी दरियाओं दर्दे अकल

जेकर तैनू तलब मुहम्मद इस रस्ते टोरो अड़िया मुड़ आमन दी रख

नाल रियाजत करी सफाई शान फिकर दी कुछ तू मत खुशबूयों इश्क दी करसी मत खुशबूयों इश्क दी करसी तालब ऐद आलस तू।

0: बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब को,
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे एम खान साहब जनाब, इन्होंने अलामा इकबाल साहब का कलाम और मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम जो है सुनाया, बहुत शुक्रिया इनका। और दोस्तों आप वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद दोस्तों आप दोस्तों से मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी एम खान साहब ने लाइन नहीं छोड़ी कि दूसरी कोई बंदा लाइन पकड़े, तो एनीवे नदीम मंसूर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's Vision presents आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: You are listening to Sunrise Radio, the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio.
4: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ, जैसा कि कमर्शियल पे जाने से पहले कहा था कि नदीम मंसूर साहब जुड़े हुए हैं, तो तालियों की गूंज में उन्हें खुशामदीद, वेलकम जी एनु कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। जनाब नदीम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नदीम मंसूर साहब, आपका म्यूजिक आ रहा है जनाब, आपकी लाइन को गड़बड़ हो गई है। नदीम मंसूर साहब, हेलो।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: ओ वालेकुम अस्सलाम, मैं तो परेशान हो गया, म्यूजिक चल पड़ा है जनाब।
5: और ये देखो, कॉल आ गई।
4: अच्छा, कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैं ठीक हूँ सर, आपको बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से, चाहत से, आपको दिल की अथक गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा था जनाब।
5: रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब।
4: कैसे हैं जनाब, ठीक हैं?
5: मैं जबरदस्त, अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं?
4: मैं ठीक हूँ। आज बड़ा खुश हुआ मैं कि मेरा भाई जो है प्रोग्राम के शुरू में ही सुन रहा है, हमारे साथ है।
5: मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने शुरू में ही फोन किया था ना।
5: जी जी जी जी जी
4: जी। तो थोड़ा सा मन बड़ा बेचैन है, बेचैनी के साथ ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपने कहा था कि मैं अपने ही लिखे हुए आपको जो है वो माइये सुनाऊंगा, तो वो तो आप जल्दी में थे, शायद मुकम्मल ना कर सके हूँ, तो क्या सुनाने जा रहे हैं?
5: अल्लाह का शुक्र, वही मैंने कम्प्लीट कर दी।
4: अच्छा, कम्प्लीट कर दिए, क्या बात है जनाब, क्या बात।
5: बैठा हुआ था, मैंने कहा आपके नजर आपको पसंद भी आएंगे और सुनने वालों के नजर।
4: वाह जी वाह, ये खुद आपने लिखे?
5: जी जी जी।
4: वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब।
5: तो ये आपकी नजर और सबकी नजर।
4: थैंक यू सर।

कोल सोना सजन बैठा होवे कश्मीरी, कोई चाहोवे कोल सोना सजन बैठा होवे कोई चाहोवे, कोई दे जा छला।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका जनाब, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, इतना प्यारा लिखा कलाम आपने माये लिखे और आकर अपनी प्यारी सुरीली मीठी आवाज़ में सुनाया तो मेरे फ़ोन में भी गुड़ गुड़ गुड़ हुई, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, देखा तो जनाब अयूब चौहान साहब का मैसेज था।
0: अच्छा।
1: कहते हैं वो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई का, शुक्रिया अदा करो यार। मैंने कहा शुक्रिया तो अदा वैसे भी मैं करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी तरफ से स्पेशल शुक्रिया अदा करना। तो आ गए मेरे ख्याल में, एक सेकंड ठहर जाएं, लाइन पे आ गए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। जी अयूब चौहान साहब,
2: सलाम अलैकुम और शियाद भाई।
1: जी वालेकुम असलाम, सोने हो मक्खन मलाई दे पेड़ियो, ये मोबाइल ना देना, टेक्स्ट करया करो, खुद आकर क्या करो।
2: आपने कहा लाइन खाली है तो इसलिए मैं आ गया।
1: मैंने कहा आप खुद आकर कहो।
2: तो उनका बहुत शुक्रिया नदीम मंसूर साहब का,
1: इन्होंने अपने अपने खुद लिखे हुए माये सुनाए,
2: अपना खुद लिखा और गाया, बहुत अच्छा लगा। और खासतौर पर कश्मीर की चाय हो
1: क्या बात है।
2: तो बड़े काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह आए वो जब ओल्ड में जाने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, वो पिंक चाय नहीं होती, कश्मीरी चाय पीने का बड़ा मैं चस्की हूँ उस चाय का।
1: अच्छा,
2: तो आप अब आ गया, थोड़े इशार सुना देता हूँ।
1: सुना दे
2: नजर में, तुम्हें हम याद रखते हैं।
1: अच्छा,
2: तुम्हें हम याद रखते हैं अमर शहजाद भाई।
1: जी जी,
2: तुम्हारी याद से दिल का नगर आबाद रखते हैं।
1: वाह क्या बात है।
2: तुम्हारा चांद सा चेहरा, तुम्हारी झील सी आंखें।
1: अच्छा,
2: तुम्हारी बीकती पलके असीन, ले जा गने जुल्फें।
1: आहा,
2: तुम्हारा खिल खिलाना।
1: आहा,
2: और किसी बात पर असना।
1: आहा,
2: वो फिर कुछ सोचना हो, सोच कर गुम सुम हो जाना।
1: आहा,
2: ख्यालों और ख्वाबों में हमारे साथ रहता है।
1: वाह,
2: तुम्हें हम साथ रखते हैं, तुम्हें याद रखते हैं।
1: वाह,
2: तुम्हारी याद दिल के नगर आबाद रखते हैं, किसी का साथ चलना हो, किसी से बात करनी हो, तुम्हें हम याद रखते हैं अमर शहजाद भाई, खुदा हाफिज़।
1: देखो ना, खुदा हाफिज़ कहने से पहले बात यह है कि देखिए कितना फायदा होता है, आप आए नदीम मंसूर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए, और देखिए आप फिर इतनी प्यारी खूबसूरत सी गजल भी हमें सुना गए, कितना फायदा हुआ जनाब।
2: नहीं, वो तो फायदा तो होता ही है ना, हर बात में फायदा होता है, लेकिन अगर लाइने बिजी हो ना,
1: तो ना वो कहते हैं क्योंकि आपके पास तो अच्छा है नंबर है, आप तो टेस्ट कर सकते हो, जैसे चौधरी मुजफ्फर साहब हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई आज गैर हाजिर है, मेरे ख्याल आज सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वरना वो मोबाइल पे जरूर मिस कॉलें देते हैं। भाई मिस कॉलें क्यों देते हो, तो
2: लाइव आना चाहिए ना।
1: हाँ, खुद आकर कहो तो कितना अच्छा लगे यार, अगले को क्या पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ।
2: बिल्कुल,
1: जब बंदा खुद आकर कहे तो और बात होती है, उसका मजा और होता है।
2: कभी मुलाकात हुई तो उनको ये हम कहेंगे।
1: हाँ, आने आकर आकर कहा करें ताकि सबको पता चले वाकई भाई इनको मजा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब अयूब चौहान साहब, ढेर सारी तालियां उनके लिए, आए थे नदीम मंसूर साहब की तारीफ़ करने के लिए, और साथ में फिर जनाब हमें बहुत ही प्यारी सी चीज़ सुना गए हैं, इतनी प्यारी गज़ल सुना गए हैं, तो अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे कह रहे थे फ़ोन पे कि मेरे मोबाइल पे कि भाई इनको शुक्रिया अदा करना, तो मैंने कहा खुद करो ना, आगे लाइनें खाली हैं आके कर लो, तो आए तो अच्छा ही हुआ, कम से कम हमें उनसे एक और प्यारी सी गज़ल सुनने को मिली। तो दोस्तों अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप दोस्तों के लिए, और कमर्शियल पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि टाइम चेक कर लें।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:45, यानी कि 45 minutes past 12, तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
8: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
9: And fix those drips and drops.
10: And take shorter showers, yeah?
11: Because when we work together,
12: it all adds up.
13: So come on, you lot, search Let's Save Water.
14: My favourite radio station, Sunrise Radio.
15: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
16: We love Sunrise Radio.
17: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
18: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
1: जी दोस्तों, अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं जनाब प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा, तो ढेर सारी तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एनू सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
19: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: कैसी हो बहना?
19: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र,
1: अल्लाह हमेशा करम रखे।
19: आमीन आमीन।
1: तो क्या लेकर आई हैं आज आप?
19: बस कोई आपके लिए गजल, कोई सलाम दुआ, कोई हाल चाल।
1: सही है, सब कुछ आ जाता है बीच में,
19: ये फिर सारा कुछ इकट्ठा करते हैं तो फिर एक आपका प्रोग्राम बनता है ना।
1: जी बिल्कुल बहना, बिल्कुल।
19: और मैंने कहा आप बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं, तो मैं नाम
1: आयू चौहान साहब के साथ।
19: हाँ चौहान साहब के साथ।
1: चौहान साहब ने आज ड्राई दिया था मुझे।
19: अच्छा, वैसे आप डरते नहीं है, डर कैसे गए? मुझे तो ये

0: वो बस होता है ना कभी कभी वो अच्छा बंदे की बात करने से पता चल जाता है बंदा किस हाल में जी रहा है।
1: हाँ अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं वरना ये ना हो कि वो वहां से टैक्सी पकड़ के ब्रेडफोर्ड आ जाए।
0: कोई बात नहीं आ भी जाएगा आप संभाल लोगे।
1: ऐसे बंदे संभालने मुश्किल होते हैं, बड़ा वैरा बंदा है।
0: एक आप प्यार कर लो ना।
1: नहीं प्यार तो बहुत करता है उसमें कोई शक नहीं है। कदी कदी कदी कदी वो कहते होंगे ना ऐसे जो सज्जन हो तो दुश्मनों की लोड़ कोई नहीं होंगी।
0: ये भी बात सही है। दूसरा ये है कि जो सज्जन मारता है ना वो कहते हैं शेख सादी साहब का है ना कि वो उन्होंने गजल पढ़ी सारों ने किसी ने गमला उठा के मारा किसी ने कुछ मारा। वो एक दोस्त था उसने सिर्फ फूल मारा और वो रो पड़े।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि ये सारों ने तुझे इतना मारा है तू कुछ नहीं तुझे चस से मस नहीं हो और मेरी दफा। कहता है सज्जना में फूल भी बड़े तीर वांगू लगते हैं।
1: सही है सही है सही है।
0: तो ये साहब है अल्लाह खैर करे बेहतर सर। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। लाला फरियाल नहीं अभी आए?
1: कोई नहीं आया अल्लाह खैर ही करे।
0: इंशाल्लाह अगर लाइन मिल गई तो जरूर आएंगे। वो गड़बड़ियां चल रही है ना।
1: सही है सही है।
0: गड़बड़ियां कब खत्म होनी है वहाँ
1: कोई पता नहीं। 3 महीने से ऊपर हो गया है मेरे ख्याल में।
0: अल्लाह
1: खैर ही करे। अब क्या करें जहाँ कोई सुनाई ना हो वहाँ यही कुछ होता है ना।
0: बस
1: कोई सुनाई नहीं है ना किसी।
0: अब क्या करें हम। मैं मेरा तो एक ही कुलिया है कि अपने आप को सही करो तो सब सही हो जाएगा।
1: पूरा निजाम धर्म भरम है।
0: हाँ
1: चलो
0: कोई मैं छोटी सी गजल सुना दूँ?
1: जी जरूर जरूर जरूर।
0: मेरे बाद महबूब इलाही साहब भी कहता है और वो
1: सही है। जी जी।
0: किरदार मुस्तफिर था कहानी में हम भी थे।
1: वाह वाह क्या बात है।
0: किरदार मुस्तफिर था कहानी में हम भी थे दो चार दिन तो किस्सा फानी में हम भी थे।
1: वाह क्या बात है क्या बात है।
0: थैंक यू भाई। दो चार दिन तो किस्सा खानी में हम भी थे राय बनाने वाले जरा रफ्तार गा से पूछो। राय बनाने वाले जरा रफ्तार गा से पूछो कुछ आयनों का ख्वाब जवानी में हम भी थे।
1: सही है सही।
0: कुछ आयनों का ख्वाब जवानी में हम भी थे फिर जिंदगी में दफातन मतला बदल दिया।
1: क्या बात।
0: जिंदगी थैंक यू। फिर जिंदगी ने दफातन मतला बदल दिया पहले पहल तो मिश्रा फानी में हम भी थे।
1: क्या बात।
0: थैंक यू भाई। पहले पहले तो मिश्रा थानी में हम भी थे दीवार पर लगाए लगा के हटाई भी इसने खुद। दीवार पर लगाकर हटाई भी इसने खुद तस्वीर थी पुरानी पुरानी में हम भी थे।
1: वाह वाह क्या बात है।
0: दीवार पर लगा के हटाई भी इसने खुद तस्वीर थी पुरानी पुरानी में हम भी थे।
1: वाह क्या बात है।
0: किरदार मुस्तफिर था कहानी में हम भी थे दो चार दिन तो किस्सा खानी में हम भी थे।
1: वाह वाह।
0: पीछे कोई है देख?
1: नहीं नहीं आप सुनाए सुनाए।
0: मैं फिर एक और देखती हूँ। उदास शहीन उजाड़ रखते कभी बुलाए तो लौट आना।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: थैंक यू भाई। उदास शामे उजाड़ रखते सॉरी मैं शामे की चाहिए नहीं था। उदास शामे उजाड़ रखते कभी बुलाए तो लौट आना।
1: वाह।
0: की आंखों में रक्त जगों के अजाब आए तो लौट आना।
1: आहा, क्या बात है बहुत खूब।
0: थैंक यू भाई। अभी नई वादियों नए मंदिरों में रह लो मगर मेरी जान ये सारे एक एक करके जब तुमको छोड़ जाए तो लौट आना।
1: आहा, क्या बात है बहुत खूब।
0: थैंक यू भाई। ये सारे एक एक करके जब तुमको छोड़ जाए
1: तो लौट आना।

0: औसत।
1: वाह वाह
0: क्या बात। जमानों का तज ओड़े ज़ईफ़ लम्हे निढाल यादें, तुम्हारे ख्वाबों के बंद कमरों में लौट आए तो लौट आना।
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात।
0: तुम्हारे ख्वाबों के बंद कमरों में लौट आए तो लौट आना। अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाए तुम्हारे साथी और अपनी खातर अपने अपने दिए जलाएं तो लौट आना।
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात।
0: अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाएं तुम्हारे साथी और अपनी खातर अपने अपने दिए जलाएं तो लौट आना।
1: वाह वाह क्या बात है।
0: मेरी वो बातें जिनमें बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, मेरी वो बातें जो जिन पर बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, बिछड़ने वाले मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो लौट आना।
1: वाह वाह क्या बात है क्या बात।
0: बिछड़ने वाले मेरी वो बातें याद आएं तो लौट आना। उदास शामे उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: किसी की आंखों में रत जगों के अजाब आए तो लौट आना। थैंक यू भाई बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका बहना कमाल किया आपने कमाल की शायरी आपने जो है वो सुनाई। आप कभी लतीफे नहीं कभी आपने सोचा कि वो कोई लतीफे भी
0: आते हैं। मैं पता बड़ा सोचती हूँ कि पता नहीं ये मेरे लिए नहीं ठीक होगा मैं किसी को ऐसे ना को मैं ढूंढ लूंगी अपने अपने जैसे लतीफे।
1: अच्छा नहीं अपने जैसे कैसे लतीफे कैसे हो सकते हैं बहना आप आपको लतीफा थोड़ी है।
0: नहीं मैंने कहा मतलब जो मुझे सुनाने में जरा हिचकिचाहट ना
1: हो। नहीं सुनाने में होती है मुझे भी कई बार कोई लतीफा आता है ना तो मैं फिर सुनाने से गुरेज करता हूँ क्यों कि कुछ लतीफे ऐसे होते हैं फिर कुछ लोग माइंड कर जाते हैं यार ये जब भी कोई लतीफा सुनाता है अगर कोई दो चार इतफाकन कोई औरतों के बारे में ही आ गया तो फिर कहेंगे देखो जी ये पता नहीं कोई औरतों के खिलाफ है और ये इस तरह के करता है ना तो अभी
0: यही सोचते हैं कि ना भाई
1: मैं
0: खुलाकी ना हो जाए।
1: हाँ तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो चापू राम के पहले हिस्से में तो मुझे एक बंदे ने अब नाम नहीं लेना चाहिए तो उन्होंने मुझे एक लतीफा सुनाया ऑफ ईयर था ना मैं वो पहले ओवर में गाने लगा रहा था।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काफी अच्छा लगा और काफी देर में वो गाना लंबा था और मैं काफी देर हंसता रहा तो वो वैसे मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ वो लतीफा।
0: हाँ करो बिस्मिल्लाह।
1: वो उसने मुझे उसने तो बड़े बड़े अंदाज से सुनाया था ना खूब बटर घी लगा के। अच्छा, वो थोड़ा लंबा उसने मैं बस सरी वो आपको
0: तो सुना दे थोड़ा सा
1: उसने मसाले खूब लगाए थे बड़ा मजा आया मुझे वो सुनने का। अच्छा, तो अच्छा। मैं आप शॉर्टकट आपको बता देता हूँ ना तो वो इस तरह था कि कोई दुकानदार था ना वो अच्छा। खातून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया आखिर बोला मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया तो और वो खातून बोली बोलती है कोई बात नहीं मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी पसंद कब आई जब वो कपड़े खरीदने नहीं आई थी ना तो वो बेचारा दुकानदार कपड़े दिखा दिखा दिखा के आखिर तंग आकर उसको भी बड़ा थोड़ा दिल में मलाल हुआ कि मैं इस बहन की कोई मदद नहीं कर सका इसको मेरी दुकान से कोई कपड़ा नहीं पसंद आया हर कपड़ा दिखाया तो
0: वो करने नहीं आई थी
1: वो तो टाइम पास कर रही थी वो तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी।
0: ये वैसे कई औरतों को मैंने देखा है मर्दों को तो नहीं मैं कह सकती विंडो शॉपिंग की आदत होती है मुझे नहीं होती मैं घर से देन बना के जाती हूँ उस जगह जाती हूँ और वहीं से खरीदती हूँ।
1: नहीं कभी कभार ऐसा होता है नहीं विंडो विंडो शॉपिंग का बिना कभी फ़ायदा होता है कि आप विंडो शॉपिंग करेंगे ना तो आपके जहन में होगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि फलां दुकान पे इस तरह की चीज़ जो मुझे चाहिए वहाँ है,
0: तो वो तो इंटरनेट है ना।
1: हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बहना बहुत शुक्रिया। अब खबरें आ गई,
0: लतीफा सुनाई देती हूँ
1: और खबरें आ गई हैं, जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे पे कुछ सेकंड रह गए।
0: औरत ही औरत की तकलीफ को समझ सकती है।
1: अच्छा,
0: अकेली अकेली बेचारी औरत तकलीफ क्या समझेगी।
1: हाँ,
0: तो अकेला तो दरख्त भी सूख जाता है।
1: सही है सही,
0: इसलिए बीवियां दो होनी चाहिए।
1: ये मैं इतफाक नहीं करता हूँ इससे, इस चीज से। ठीक है बहना, बहना टाइम हो गया बहना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
2: From the Sky News Centre at 1, some breaking news. A passenger ferry carrying 270 people has capsized off northern Cyprus. The boat was heading to the Turkish port of Tasuku, according to local media. Most of those on board have been located, but around 100 are reported to be unaccounted for. Criminals serving sentences for all types of unlawful killing won't be eligible for the early release scheme in England and Wales. Revisions announced by the Prime Minister mean that two men convicted of the manslaughter of PC Andrew Harper will stay in prison. One Governor, Robin Tangi, says the system's under pressure.
3: It's busy. Things are challenging at the minute. Obviously, we've had capacity pressures for a number of years. That pressure builds up over time and our kind of resilience obviously is affected over time. We have had to adapt over the last few years of capacity issues.
2: A German national has been arrested after a 31-year-old British woman was stabbed to death at a train station in Germany. Officers were called to Rosenheim in Bavaria in the early hours of this morning. Iceland has voted against a government proposal to resume talks to join the European Union. The country was divided over issues including security and its fishing industry. NASA's newest telescope has launched successfully from Cape Canaveral in Florida.
4: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
5: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe. Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
2: The giant lens will probe some of the biggest cosmic enigmas in the universe. They include dark energy and dark matter. The project, costing around £3 billion, will also search for planets beyond the solar system and test gravity at vast scales. To football, and it is goalless at half-time between Rangers and Aberdeen at Pittodrie. The Glasgow club are hoping to win their first Scottish Premiership game under boss Derek McInnes. That's the latest. I'm Nick Qureshi.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सन्ना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। राणा नवीद साहब माजूर चाहते हैं, जब मैं गजाला जमीन बहना से बात कर रहा था आपने भी फ़ोन किया, उस वक्त मेरी फ़ोन पे कोई नगाह नहीं थी, मैं बातों में मसरूफ रहा, इसलिए राणा नवीद साहब माजूर चाहता हूँ आपकी कॉल नहीं ले पाया। तो अगर अभी आप इससे में फ़ोन करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब, और ये लाइव कॉल का सिलसिला शुरू होगा हिट ऑफ द आवर के बाद। एक प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, उसके बाद ही दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलेंगे जनाब अब हिट ऑफ द आवर की जानिब, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: इतनी चाहत छपाए बैठा हूँ ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। बहुत ही प्यारा गीत था बबल्स प्रोयो और साजरा सरगम की आवाजों में दोस्तों। तो चलते हैं इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है जनाब 1:12 यानी कि 12:01। तो चलते हैं जनाब अब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है उसकी जानेब, उसके बाद नदीम मंसूर साहब से कुछ सुनेंगे जनाब। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 7230300।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब और ढेर सारी तालियां एक बार फिर उनके लिए, नदीम मंसूर साहब के लिए। और अब चलेंगे उनसे कुछ सुनेंगे। अब पिछले आवर में तो उन्होंने क्या माया सुनाया, अपना ही लिखा हुआ। तो जनाब नदीम मंसूर साहब, एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम
3: जी। सर पिछले आवर की जो है ना मिठास अभी तक गई नहीं है।
4: चलें ठीक है, एक और अभी गजल है इसकी मिठास आपको देता हूं।
3: हाय हाय गजल, क्या बात है।
4: लेकिन इसका अंदाज अपनी किस्म का होगा, इसका इशारा बड़े बड़े प्यारे।
3: जी जरूर जरूर।
4: तो ये आपकी नजर सबकी नजर है।
3: थैंक यू सर।
4: इशारों ही इशारों में वो कुछ फरमा ही जाते हैं, इशारों ही इशारों में वो कुछ फरमा ही जाते हैं, नजर मिलते ही दिल की बात, नजर मिलते ही दिल की बात वो समझा ही जाते हैं, इशारों ही इशारों में

का राज वो बतला ही जाते हैं, इशारों ही इशारों में वो कुछ फरमा ही।

नजर मिलते ही दिल की बात वो समझा ही जाते हैं।

वो यादों में मोहब्बत के दिए जला ही जाते हैं, इशारों ही इशारों में वो कुछ फरमा ही जाते हैं। कभी हम रूठ जाएं तो हमें वो मना ही लेते हैं, कभी हम चुप हो तो खुद बात

खुदा जाने वो क्या जादू है उनकी मुस्कुराहट में, खुदा जाने वो क्या जादू है उनकी मुस्कुराहट में, अरे उदास आँखों को भी, उदास आँखों को भी हंसना रे सिखला ही जाते हैं, इशारों ही इशारों में वो कुछ फरमा ही जाते हैं, हम उनकी एक नजर को उम्र भर कैसे भूलेंगे, हम उनकी एक नजर को उम्र भर कैसे भूलेंगे, वो एक लम्हे में दिल पर नक्श तो

पर नक्श तो बना ही जाते हैं, मोहब्बत नाम है शायद इसी एहसास का।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या गजल सुनाई आपने, और बड़ी प्यारी गजल थी और बड़े प्यारे अंदाज में आपने गाई, और मुझे रफी का एक गाना याद आ गया कि इसके बाद क्या होता है। तो एनीवे वो जरूर प्ले करूंगा। तो एनीवे नदीम मंसूर साहब, आपने पहले आवर में अपना ही लिखा हुआ माइया सुनाया, बहुत प्यारा था, और आपने इस आवर में ये गजल हम सबको सुनाई। क्या गजल है और क्या आपकी आवाज है जनाब, बड़ा सुरूर आ रहा था और मन नहीं चाह रहा था कि आप ये गजल कहीं खत्म हो जाके, दिल कर रहा था सुनते रहें। बहुत अच्छा लगा आप आए, अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, आप सभी का दिल बहलाते हैं, और हमेशा प्रोग्रामों में टाइम कोई निकालना आसान काम नहीं है। आज तो छुट्टी है, आप घर में हैं, लेकिन बाद प्रोग्राम होते हैं वो आप काम पे होते हैं, तो वहाँ से भी टाइम निकाल के हम सब के लिए आप प्रोग्राम में शमूलियत करते हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी, और अल्लाह आपको सलामत रखे, दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब नदीम मंसूर साहब, क्या अल्लाह ने इनको आवाज़ दी है जनाब, बहुत प्यारी आवाज़, और बड़े प्यारे हैं भी, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और गुफ्तगू भी बहुत प्यारी करते हैं, और मिलने का इत्तफाक हो कभी आपको तो आपको ऐसे प्यार से मिलते हैं कि मन नहीं चाह रहा चाहता कि फिर इनसे अलविदा हूँ। तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारा गज़ल इन्होंने प्यारी सुनाई, तो वो तो प्यार के बारे में थी, और फिर बंदा बाद में क्या कहता है ये रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत ही सदाबहार प्यारा गीत सुना। यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत, अगर कोई साथ साथी जुड़ा नहीं तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद आप गीत सुनेंगे या किसी दोस्त की आवाज़ सुनेंगे।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

0: जी दोस्तों, रफी साहब को आपने सुना, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज। और अब सुरीली आवाज के मालिक और आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उनके लिए ढेर सारी तालियां जनाब, उन्हें खुश आमदीद, वेलकम जी अनु कहेंगे जनाब। महबूब इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हजूर कैसे हैं जनाब, ठीक है
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सच्ची बात, 100%। तो जनाब क्या लेकर आए हैं आज आप?
1: शायरी है।
0: हाय हाय, गाना कब सुनाएंगे यार?
1: गाना वाकई में जेन था आज गाने में, लेकिन टाइम बहुत कम मिला मुझे ना रुकने का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं,
1: तो एक दफा पहले वो कर लेना फिर गाया जाए।
0: सही है सही है सही है, रिहर्सल जरूरी है।
1: जी जी जी
0: जी।
1: तो जे शायरी जनाब हम करना चाहेंगे चौधरी मुजफ्फर साहब की। तो गुजरती है महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, भाई मंसूर आए, भाई अहम खान आए, गजाला जी आई, और जितने भी
0: चौहान
1: साहब आए, अयूब चौहान साहब लतीफे सुनाने के लिए
0: आए हैं,
1: तो उनके नाम भी करना चाहेंगे। और भाई जावेद मीर हैं, और भाई शकील साहब हैं, भाई सफीउल्ला हैं, और हमीदा जी हैं, और सभी के नाम आपके नाम भी।
0: जी थैंक यू
1: जी। शायर लिखता है
0: जी जी।
1: हो रात अकेली सुंदर सी और चांद आंगन में आ जाए।
0: वाह।
1: हो रात अकेली सुंदर सी और चांद आंगन में आ जाए, तुम चांद की मन तनहा हो, ये बात तुम्हें तड़पा जाए।
0: वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है।
1: थैंक यू। तुम चांद की मन तनहा हो, ये बात तुम्हें तड़पा जाए, कुछ ख्वाब सजा कर पलकों पे, कुछ ख्वाब सजा कर पलकों पे, तुम चांद से बातें कर लेना।
0: हाय हाय, क्या बात है।
1: कुछ ख्वाब सजा कर पलकों पे, तुम चांद से बातें कर लेना, हम याद तुम्हें ही करते हैं, तुम याद हमें भी कर लेना।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब।
1: हम याद तुम्हें ही करते हैं, तुम याद हमें भी कर लेना। सुनो कुछ बात ना हो जब ऐसे में, नम आंख तुम्हारी हो जाए।
0: ओए होए होए, क्या बात है, क्या
1: बात ना हो, कुछ बात ना हो जब ऐसे में, नम आंख तुम्हारी हो जाए। तुम बात कहीं पे करते रहो, करते हो दिल और कहीं पे खो जाए।
0: हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब।
1: थैंक यू। तुम बात कहीं पे करते हो, दिल और कहीं पे खो जाए, जज्बात के ऐसे आलम में, जज्बात के ऐसे आलम में, मुस्कान लबों पे भर लेना। जज्बात के ऐसे आलम में, मुस्कान लबों पे भर लेना, हम याद तुम्हें ही करते हैं, तुम याद हमें भी कर लेना।
0: वाह बहुत खूब।
1: हम याद तुम्हें ही करते हैं, तुम याद हमें भी कर लेना। हर रात अकेली सुंदर सी, हर रात अकेली सुंदर सी और चांद आंगन में आ जाए, तुम चांद की मानद तनहा हो, ये बात तुम्हें तड़पा जाए। साफ सजा कर पलकों पे, तुम चांद से बातें कर लेना।
0: हाय हाय,
1: तुम चांद से बातें
0: कर लेना, क्या बात क्या बात।
1: थैंक यू जी।
0: वाह जनाब, थैंक यू आपका सर, जो आप आए, टाइम निकाला, प्रोग्राम में शमूलियत की और इतनी प्यारी शायरी आपने प्यारे अंदाज में सुनाई हमको, तो जनाब शुक्रिया आपका। आप शर्मिंदा करते हैं हमें, तो जनाब इंशाल्लाह फिर भी मौका मिलेगा, आपको सुनेंगे, तो आ जाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, दो में याद रखिए, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी तालियां जनाब महबूब अल्लाह साहब के लिए, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ के मालिक, अल्लाह ने बहुत प्यारी इनको आवाज़ दी है, और बंदे भी बड़े प्यारे हैं जनाब, बड़ा खलूस और मोहब्बत से बंदे से खुंदा पेशानी से पेश आते हैं जनाब, और बड़े प्यार करने वाले हैं, अल्लाह ने इनको आवाज़ भी प्यारी दी, तो इनका बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में इन्होंने शमूलियत की और प्रोग्राम में हमारी में चार चांद लगाए, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो चलते हैं दोस्तों, अब क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा, कोई लाइव कॉल नहीं होगी, क्योंकि वक्त हो चुका है जनाब जोहर की अजान का, तो चलेंगे जनाब सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:42, यानी कि 1:42 तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। जनाब कमर्शियल के बाद दोस्तों आप एक सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे, उसके बाद आप साथियों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

अभी आपने लता जी और मुकेश की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और आज जनाब हमारे बाद प्रोग्राम करते होते हैं जनाब काशिफ भाई, आज काशिफ प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो माजे चाहते हैं आज आप उनको नहीं सुन पाएंगे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो आप के लिए यहाँ मौजूद होंगे। तो दोस्तों मेरे प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं होता है, उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा, साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि इस उम्मीद के साथ कि आप जनाब आइंदा भी हमारा साथ निभाया करेंगे। तो जनाब आज का जो गीत मैं छोड़े जा रहा हूँ आप सभी दोस्तों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, उम्मीद रखूँगा आप इस गीत को एंजॉय करेंगे, लंबा गीत है इसलिए मैंने सोचा मैं अभी इजाज़त ले लूँ, इसको मैं गीत को बीच से काटूँ ना। तो दोस्तों मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: तुमसे एक रुपया क्या मांगा, तुमने तो लेक्चर दे डाला।
1: तुमने जरा भी ध्यान दिया, मैंने फ्री में तुमको कितना ज्ञान दिया। वरना सोचो, जिसके पास एक रुपया ना हो, वो चाहे हो जीता मरता, उससे

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

खुगे मोरे उसुख के पाके का अवे जमा खोरे तुब पदक का स्वाद के पदक पटू के हम फल कोर के तक कसी बली भी के संगचरी कवली।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुत्तियां भी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नक्के नतीला है सिर्फ दो पौंड ना। कानस लाने ना, एक पौंड छापां ते बंगा नी कोई मजदूरी नी। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन

0: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmile Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmile Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

0: and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: Always Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
3: हूँ. Always.
5: देखो मैं हूँ कहाँ.
3: Always Khan.
5: आ रहा हूँ पलट के.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीलाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274 488 935।
4: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

0: राइट दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और बहुत खूबसूरत गीत था और आपने एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और हमारा साथ दे रहे हैं और सब सुनने वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunrise Radio clock, it's 20 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the power. Because काफी calls आ रही हैं और लाइनें काफी चमक रही, धमक रही हैं और यहाँ पे स्टूडियो में रौनक हो गई है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और सबसे पहले कॉल आज है हमारे वाजिद भाई ने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आप फोन करने का, हौसला अफजाई करने का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मुझे फोन करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद किया। देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम अतिका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम गिदन भाई, हमारे पापी जान सुमित्रा जी ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से हैं, उन्होंने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आशा जी कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अली भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मिस्टर मिसेज पटेल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बर्मिंघम से आपने हमें याद कर रहे हैं। और सिमी जी हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और आने वाला गीत मैं पेश करूँ वाजिद भाई आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा, आपके दोस्त बाब अजीज हैं उनके लिए होगा। और ये गीत मैं पेश करूँ गिदन भाई और हमारे पापी जान, ये गीत आपके लिए होगा। आई होप यू गोना एंजॉय द वेदर एज वेल, क्योंकि मौसम जो है बड़ा ही प्यारा मौसम, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, क्योंकि मेरा फेवरेट मौसम है। और अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग और से हमारा साथ दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। आने वाला गीत आपके लिए भी होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और ठंडा ठंडा मौसम है, मेरा फेवरेट मौसम है, मौसम कोई भी हो और सब मैं मौसम को इंजॉय करूँ। डज मैटर वे एवर इट इज, डज मैटर वे एवर इट इज, आई लव every day of the week and doesn't matter if it's Monday or if it's Sunday, it doesn't matter. Aur wohi baat ho rahi hai, zindagi khoobsurat hai, it's all depend on you how you celebrate it. Aur ye wo geet aane wala hai, enjoy the track as well, one of my favorite tune, enjoy.

0: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
1: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks, and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: Sunrise Radio. Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio. And moving on to another beat for the track. Bobo, shukriya aapka bhi. Aur hame acha lag raha hai. Vajay bhai, main sorry aapse dobara, aapne dobara phone kiya aur baat nahi ho chuki hai. Aur thodi der ke baad aap dobara phone karenge to aapse hum baat karenge. Aur Bobo, shukriya aapka bhi. Aur kafi calls miss ho chuki hain. Aur ab hume dobara phone karenge to I will take you calls and I will inshallah speak to you as well. Bobo, shukriya aapka bhi. Anyway, moving on to another beat for the track. Aur ye geet main pesh karne ja raha hu. और सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत आपके लिए होगा और आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है, सुनने वाले को सलाम पेश करें तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और नशीन साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सलाम पेश किया है और आप फिक्रमंद हैं और आपने कहा कि अल्लाह खैरी करे कि क्या वजह है कि हमारे चौधरी फरियाज साहब वगैरह हाजिर हैं, तो उनके लिए आप दुआ गो हैं. और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पता चले कि क्या हो गया, हमारे भाई साहब कहाँ चले गए, क्योंकि हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं. कोई प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जब वो फ़ोन ना करें, और मुझे मेरे प्रोग्राम में स्पेशली वो फ़ोन करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह खैरी करे. और जो सुनने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह खैरी करे, वो कहाँ चले गए हैं कि मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कॉल उनकी नहीं आई है, तो इसलिए मैं मलाल व दुख हुआ मुझे कि क्या वजह है कि वो हमारे चौधरी फरियाज साहब कहाँ चले गए, क्योंकि नशीन साहब ने हमेशा ही वो फ़ोन करती हैं, हौसला अफजाई करती हैं, उनके लिए दुआएँ करती हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका. और शाहपरी जी हैं, जलेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. आपने भी पूछा है, हाल वाल पूछा है, हमारे डॉक्टर मलिक साहब हैं, उन्होंने भी हाल वाल पूछा है कि अल्लाह खैर होनी चाहिए. और हम दुआ गो हैं. और उनके जो मोहतरम हैं, हमारे जो बहुत ही प्यारे भाई हैं, आजी सलीम साहब, आपने हमें फ़ोन करके बताएं कि अल्लाह खैर ही किया कि वो आप उनके ब्रदर लॉ हैं, तो आप बता सकते हैं. हमारी भाभी जान सुन रही हैं प्रोग्राम माशाल्लाह रोशटेल में, तो वो भी हमें बता सकती हैं. अल्लाह खैर ही करे कि हम उनके लिए परेशान हैं, दुआ करते हैं अल्लाह खैर ही करे कि क्या वजह हुई है कि उन्होंने फ़ोन नहीं कर रहे, क्या वजह, क्या मसला क्या है. और हम हमेशा ही उनके लिए दुआ गो हैं और हम उनके लिए और सैद के लिए दुआ करते हैं, और ये हमें बताएंगे तो पता चल जाएगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमें अच्छा लग रहा है कि आप देखो, ये होती है जब मैं कहता हूँ कि ये फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली शो है, इसमें आप शिरकत करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, एक दूजे के साथ अच्छा तावन करते हैं, ये खूबसूरती होती है. और देखो आजकल के ज़माने में नोबडी केयर्स एनीबॉडी, डजंट मैटर हु दे एवर. और यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम हाजिरी लगा रहे हैं, हाजिरी लगाते हैं माशाल्लाह, और जो गैर हाजिर होता है तो हम परेशान होते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं अल्लाह खैरी करे कि क्या वजह हुई है. और गैर हाजिर क्योंकि बंदा क्योंकि जो भी मेरे जो जाने वाले हैं जो मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं हमेशा ही मुझे फ़ोन करते हैं कहते हैं ये है वो है वो मुझे इतला करते हैं और मुझे आगाह करते हैं माशाल्लाह और वो भी खूबसूरती है उनमें सब खूबसूरती है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एनीवे मूविंग ऑन टू द दिस ब्यूटीफुल ट्रैक व्हिच आई एम गोना बी प्लेइंग नदीम मंसूर साहब, ये गीत आपके लिए भी होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और अतिका साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके लिए भी होगा। बिल्लो जी ये गीत आपके लिए भी गा, आपका भी शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और ये खूबसूरत गीत आप सब जो सुनाते हैं उनके लिए होगा जो खामोश लिसनर हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर हैं। और नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सब सुनने वालों को सलाम पेश किया है, कहते हैं कि हम प्रोग्राम सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं वेनसडे और संडे को और उसमें प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और जरा अफजाई करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सोनी जी फ्रॉम बर्मिंघम ये गीत आपके लिए भी होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। विद हेल्प नंबर उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो गीत है जो पेश करने जा रहे हैं, एंजॉय द ट्रैक।

0: Right, that was a wonderful tune, one of my all-time favorite geet. और बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी वादर साहब, आपने दोबारा मुझे फ़ोन किया, शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया अदा क्यों करते, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं मेरे भाई? ये गाना भी आपके लिए, रेडियो भी आपके लिए, सनराइज़ भी आपके लिए, आप हमारे मेहमान हैं ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में माशाल्लाह, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your right. Time check.
0: Time in the studio is 46 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked and keep it locked down with the Parviz Khan. और यहाँ पे छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी ब्रेक होगी, ब्रेक फौरन बाद मैंने गीत पेश करना है, और बड़े दिनों के बाद ये मैं गाना पेश करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इन्जॉय करेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून। और क्या गीत है, क्या ज़माना था, क्या दौर था जब ये गीत है, और वाओ व्हाट अमेजिंग ट्रैक as well. Anyway, I will keep you entertained until 11 o'clock. Thank you. If you're driving, and drive with the care, if you're out and about, make sure to stick around with the Sunrise Radio. And if you're doing a shopping, and aapko bhi welcome kehta hu, jiyan kehna khush aamdeed kehta hu. And if you're just woken up, welcome, jiyan khush aamdeed. Where have you been all them hours? I know you're just woken up, but anyway, you're wasting time anyway. Kya kehla? I should have woken up early, you know, for my program, 8 o'clock. That was could have been even better, and you missed out on 47 minutes. Anyway, not to worry, and keep it locked and keep it locked down. और जो हमारे साथी प्रेजेंटर हैं बर्मिंघम में, हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, और उनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ, ममनून उनका, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और मैनचेस्टर वाले आपका भी, मिल्टन कीन वाले आपका भी, फ्रॉम ऑल दो सराउंडिंग एरिया वेस्ट यॉर्कशायर, आप सबका मैं शुक्र गुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड शफील वाले आपका भी शुक्र गुजार हूँ, आप ही सुन रहे हैं, और रशडेल वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पाकिस्तान वाले बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। Sunrise Radio.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है, मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot, search Let's Save Water.

Alright, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया बहुत-बहुत शुक्रिया रेखा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी आपने हमें याद किया है और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने गानों को पसंद करें enjoy करें बहुत-बहुत शुक्रिया Moving on to the another beautiful track which I'm going to play for हमारी माँ जी ने फोन किया बहुत-बहुत शुक्रिया माँ जी मिशा आप मुझे कहते हैं कि चांद और बहुत-बहुत शुक्रिया जब आपने दुआएं दी हैं और मैंने यहाँ पे आमीन आमीन आमीन करता रहा बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा पूरी फैमिली के लिए होगा

फर्स्ट क्लास होंगे और हमारी पापी जान प्रोग्राम सुन रही हैं ओल्डम में, ये गीत आप दोस्तों के लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप ही इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यही गीत मैं पेश करूँ, यास्मीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया और फ़ोन करने का और हौसला अफजाई करने का दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो व्हाट, यू मेड माई इवनिंग टुडे इज़ ऑल दैट इज़ वंडरफुल और हमें अच्छा लगा। और चौधरी रुखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ हैं, ये गीत आपके लिए होगा। आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून। एन्जॉय

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स, एंड दैट वाज अ हिट ऑफ द आवर। आपने एंजॉय किया और हमें अच्छा लग रहा है, और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 9 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला है आपसे लेके 11 o'clock तक, और आप सब आ जाएं, तैयार हो जाएं, और बहुत शुक्रिया आप सब का भी। और यहाँ पे आगाज करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे

0: राइट right, और यहाँ पे हमारा साथ अतीका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से, और यहाँ भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाही व बरकातहू।
0: कैसी थी बेटी? ठीक है आपकी?
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
0: माशाल्लाह,
1: तो आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: पता चल रहा है अल्लाह पाक करम भी रखे, ये बरसात हो रही है।
0: बरसात का मेरा फेवरेट मौसम है और बड़ा ही प्यारा मौसम है, तो मैंने सोचा हमारे गिदन भाई ने फोन किया, कहते हैं कि बरसात का मौसम है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं तो बहाना ढूंढता हूँ, मैंने गाना शुरू कर दिया उसके हिसाब से, और बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह।
1: क्या खूबसूरत सॉन्ग बरसात के मौसम के लगाए आप
0: जी।
1: और सुबह से तो वैसे ही बरसात है, लेकिन ये जो खूबसूरत शाम हुई है बरसात में सॉन्ग के साथ, बहुत अच्छा लगा।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: इतनी अच्छी ये जो शाम स्टार्ट हुई है आपके सॉन्ग से, बहुत अच्छा लगा। तो आपने हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत आगाज किया
0: जी,
1: तो आपका बहुत शुक्रिया, कितने अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं आप
0: जी।
1: तो इस रंगे महफिल के सब सितारों को और चांद को सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो बहुत ही खूबसूरत महफिल आज भी होगी इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह।
1: तो सबको सलाम करते हैं, खासकर जो हमारी सुमित्रा जी हैं, गीजर भाई हैं, उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक,
0: और हमारी तरफ से भी जी माशाल्लाह,
1: सबकी तरफ से। तो बहुत ही प्यारा त्यौहार है
0: जी,
1: मुझे भी बड़ा पसंद है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: उनको बहुत बहुत मुबारक हो
0: जी।
1: तो हमारी सुमित्रा जी और गीदर भाई और रेखा जी हैं, और वो सुमित्रा बहन
0: जी जी
1: गीदर भाई जो भी जब भी आएंगे तो वो बताएंगे जो रक्षाबंधन के बारे में, और खूबसूरत सॉन्ग भी सुनाएंगे हमेशा की तरह
0: जी।
1: तो हमारी बहन नशीन जी हैं, शाहपुरी हैं, जुलेहा जी हैं, रेखा जी हैं, सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, और सितारा जी हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है
0: जी जी। उन्होंने फोन किया है और हमने भी ऐलान कर दिया है उनके लिए, खैर के लिए, और दुआ की है और हवा की दोष में, और माशाल्लाह हमेशा ही कहते हैं, और सब सुनने वाले ने माशाल्लाह दो तीन कॉलर्स ऐसे आई हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह खैर ही करे, क्या वजह है कि चौधरी फयाज साहब नहीं आ रहे, और उन्होंने उनके लिए दुआ की है। तो देखो ये खूबसूरती होती है, इसीलिए मैं हाजिरी लगाता हूँ कि हाजिरी के कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये खूबसूरती है जी माशाल्लाह।
1: शुक्रिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक से दे उनको
0: जी,
1: और वो आएंगे इंशाल्लाह
0: जी।
1: तो नदीम मंसूर साहब हैं, वो भी इंशाल्लाह,
0: वो हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह, क्या कहने उनका,
1: वो उनका क्या कहने, शकील जी हैं, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, और सजाद पहलवान साहब हैं, सजाद साहब हैं, और एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, ताज भट्ट साहब हैं, नवीद राना साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, ईशान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब लास्ट टाइम आए थे,
0: क्या कहने, उन्होंने बहुत खूबसूरत उन्होंने माशाल्लाह गुफ्तगू की है, इल्मी गुफ्तगू की, और बहुत ही गहरी
1: शायरी भी बहुत
0: बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत,
1: बहुत खूबसूरत, उनके क्या कहने, बहुत गोल्डन बातें थी
0: जी, गोल्डन बातें,
1: उनको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो कुछ अशआर हैं
0: जी जी, अरशाद।
1: तो सबकी नजर करेंगे, कहते हैं पलकों की मंडेरों पर उतर आते हैं चुपचाप, पलकों की मंडेरों पर उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते,
0: बहुत खूब,
1: गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते, जब था तू बहुत पुख्ता था एक शख्स से रिश्ता, टूटा है अब टुकड़े संभाले नहीं जाते,
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: टूटा है कि अब टुकड़े संभाले नहीं जाते, कुछ लोगों की हर दौड़ में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते, पलकों की मंडेरों पर उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते,
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: कहते हैं कितनी वीरान है ये शामे अलम तेरे बगैर, साजे दिल बजता है खामोश सनम तेरे बगैर,
0: वाह क्या कहने,
1: कोई हमदम है ना मंस ना कोई राजदान, हर कदम उठता है बोझिल सा कदम तेरे बगैर, शाम की तारीकियों में डल जाती है उम्मीद की किरण, अश्क आंखों में ठहरते हैं बहम तेरे बगैर, हमने सहराओं को गुलजार बना रखा था, हमने सहराओं को गुलजार बना रखा था, अब तो हर सांस में घुटता है दम तेरे बगैर, कितनी वीरान है ये शाम आलम मेरे बगैर, क्यों ना फिर से इस दौर में जाया जाए, मांग कर आग घर का चूल्हा जलाया जाए, बैठ कर गली में करें सब दिल की बातें, रख कर मकई की रोटी पे साग को खाया जाए।
0: बहुत खूब।
1: जब दरख्तों पे चढ़ के बेर खाते थे, कोई वैसा दरख्त फिर घर में लगाया जाए।
0: वाह क्या कहने,
1: वो तांगे की सवारी वो घोड़ों की टप टप, धीमे सुरों में फिर कोई तराना सुनाया जाए।
0: वाह।
1: मेहमान आए घर में और हो गर्मी का मौसम,
0: वाह,
1: शक्कर और सत्तू का शरबत इनको पिलाया जाए।
0: वाह।
1: शाम हो तो बच्चों को घर बुलाएं आवाजें देकर,
0: वाह,
1: डाल कर मिट्टी का तेल लालटेन को जलाया जाए।
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: काश वो सादा लोग फिर पलट आए वापस, जदीदियत का जनाजा धूम से उठाया जाए।
0: क्या कहने,
1: क्यों ना फिर से इस दौर में जाया जाए। तो ये एक नज़म है जो कि मुझे पसंद है।
0: जी जी इरशाद।
1: कभी वक्त मिले तो आ जाओ,
0: वाह,
1: हम झील किनारे जा बैठे।
0: बहुत खूब।
1: कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे,
0: वाह,
1: तुम अपने सुख की बात करो हम अपने दुख की बात करें।
0: वाह।
1: तुम अपने सुख की बात करो हम अपने दुख की बात करें,
0: वाह,
1: और इन लम्हों की बात करें जो संग तुम्हारे बीत गए।
0: वाह।
1: और इन लम्हों की बात करें जो संग तुम्हारे बीत गए, हम शहरे खराबां के बासी तुम चांद सितारों के वासी।
0: वाह वाह।
1: कभी वक्त मिले तो आ जाओ,
0: वाह,
1: हम झील किनारे जा बैठे,
0: वाह,
1: इन बिखरे मस्त नजारों को हम आंखों में तस्वीर करें। इन बिखरे मस्त नजारों को हम आंखों में तस्वीर करें,
0: वाह,
1: पत्थर पे गिरते पानी को हम ख्वाबों की ताबीर करें।
0: बहुत खूब।
1: हम ख्वाबों की ताबीर करें, इस वक्त डूबते सूरज को हम चाहत की जागीर करें,
0: वाह,
1: फिर अपने प्यार के जादू से इन लम्हों को जंजीर करें।
0: वाह।
1: कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे,
0: वाह,
1: तुम अपने सुख की बात करो हम अपने दुख की बात करें।
0: वाह।
1: तो ये रिमझिम है तो थोड़ा सा दो लाइनें हरी
0: जी जी जी जी को है,
1: पसंद है तो इसे तो मैं पहले भी ये गाती हूँ
0: जी।
1: रिमझिम रिमझिम पे पवार तेरा मेरा नित का प्यार।
0: वाह।
1: रिमझिम रिमझिम पे पवार तेरा मेरा नित का प्यार।
0: वाह।
1: छन छन बाजे मन के तार तेरा मेरा नित का प्यार। रिमझिम रिमझिम पड़े पवार तेरा मेरा नित का प्यार। आए मेरे पास तू ऐसे दूर कभी न जाए, आए न पतझर रहे बहार तेरा मेरा नित का प्यार। थैंक यू।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और आपने अच्छी शायरी की, गाना भी गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत हाफिज़ हाफिज़। राइट, दैट वाज हमारे अतिका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारा साथ दे रहे हमारे अपने हैं और हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूं कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ भी हमने क्या करना है कि हमारा साथ दे रहे वन एंड ओनली वन हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ वेलकम जी, आने खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर कैसी थी आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने कैसे हैं?
0: अल्लाह पाक का शुक्र, करम करम मौला का करम है, करम
2: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह जी।
2: चले आज एक मैं अपना ही लिखा हुआ मैया,
0: हाय हाय हाय, अपना लिखा हुआ, वाह जी वाह क्या कहने, वाह वाह वाह।
2: तो ये आपकी नजर, आपकी नजर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवादिश।
2: माड़े दिल विच, ओ माड़े दिल विच तुसा वसने हो, माड़े दिल विच तुसा वसने हो, मिकी

0: वाह वाह वाह,
1: को कोई दे जा
0: वाह
1: निशानी, कोई दे जा
0: वाह
1: छला निशानी, कोई दे जा
0: वाह।

चला निशानी सुन मेरे या दिल भर जानी माड़े दिल विच ए वेले मुड़ के नहीं आने ए वेले ए वेले मुड़ के नहीं आने ए वेले मुड़ के नहीं आने ए वेले मुड़ के नहीं आने तेनू

बेबे जकुल मेरे अमाया, बेजा कोल मेरे अमाया, बेजा कोल वे मेरे अमाया, असा

0: वाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: कमाल का दिए मेरे भाई, कमाल का दिए। और जो डडियाल का नाम लिया आपने, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, इरशाद आबाद रखे, और सुन लावा सुन रहा रेडियो पे, और क्या कहने क्या कहने, बहुत ही अच्छा लगा, वाह कमाल का दिया। और हमें अच्छा लग रहा है कि आपने इतना खूबसूरत मैया लिखा है, और ख़ुद लिखा है आपने, और बड़ा ही खुशी हुई है, और बड़ा ही अच्छा लिखते हैं, और क्या अंदाज आपने पाया मेरे भाई, आप तो ऑल राउंडर हो गए हैं, क्या कहने मेरे भाई, वाह क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट आवर में हमें एक और गाना सुनेंगे, बॉलीवुड का सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, और यहाँ पर छोटी ब्रेक करेंगे। कीप इट अप विद द सनराइज रेडियो।
2: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
9: So come on, you lot, search Let's Save Water.
2: Sunrise and Music. क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
8: We're not having that, are we?
9: No.
5: Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
8: So come on, you lot, search Let's Save Water.
0: Sunrise and Music. राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुन रेडियो 103.2 FM। और यहाँ मैं कोई कॉल नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद अजान होगी और इशा की अजान होगी, इसलिए मैंने क्या करना कि जो मैं सब कुछ होल्ड करता हूँ, और उसके बाद अजान के बाद मैंने दोबारा रिकनेक्ट करना है, कॉल लूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो आपने हमारा साथ देने। और ये जो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, हमारे भाभी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, हमारे गिदन भाई हैं, उनके लिए, एंड ऑल दोज हमारे जो बहनें हैं उन सब के लिए होगा। और ये जो गीत है आप सबके लिए होगा, और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, जो करने वाले हैं उनके लिए भी होगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून।

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइमिंग दैट वाज, और हमें अच्छा लग रहा है। और आज आप दोस्तों के लिए सरप्राइज होगी क्योंकि हमारा साथ कौन दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, और बड़े दिनों के बाद, बड़े हफ्तों के बाद, और आज वाह क्या कहने जी, क्या कहने, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप हमारा साथ दें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच। आप दोस्तों के लिए सरप्राइज होगी और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ रोकना है और जो भी है होल्ड करना है, क्योंकि अजान का टाइम होने वाला है। और हम आपको पता है कि मैं खुद, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं टू द डॉट आई ट्राई लेवल बेस्ट टू प्ले द अजान ऑन द टू द डॉट टू द पॉइंट। और यहाँ पे हमारा जो टाइम टेबल के साथ यहाँ पे मैं अजान पेश करने जा रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, बड़े अदब अदाब से, बड़े प्यार के साथ हमने अजान सुनेंगे, अदब अदाब से सुनेंगे। आप मेरे लिए दुआ करेंगे। खीप ए लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 FM।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज और यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे गुरुजी आ गए हैं और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु गुरुजी।
1: वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, A1 टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप सुना?
1: वेरी गुड, बस ठीक ठाक है। अतिका जी आए, अतिका जी ने मेरी राखी का बहुत दिन मनाया।
0: वाह जी वाह, हमने सब नारे और आपके लिए गाना भी मैंने पेश किया और हमारे बहना के लिए, और बहुत अच्छा लगा। और सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, दुआएं दे रही हैं राखी की बंधन के लिए और शुभकामना दे रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, क्या कहने।
1: थैंक यू जी, तो अतिका जी ने मेरे को फोन भी किया था, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने।
1: तो उसको बोलते हैं बहन के जो याद करते हैं।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। और हमने भी आपके लिए पैगाम भेजा था और हमने भी आपके लिए दुआएं दी हैं।
1: आपने भी किया था?
0: हाय हाय, मैंने भी किया था। वाह जी वाह, क्या कहने। और हमने कोशिश की थी कि फूल भेजें आपके लिए, बहना के लिए, बस वो हो नहीं सका। पर इंशाल्लाह के जो आने वाला साल होगा उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।
1: फूल किधर से भेजेगा, बारिश तो थी नहीं।
0: क्या कहने क्या कहने, वो देखते देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम जब हम लंदन में आएंगे इंशाल्लाह, मेंटल कीन में आएंगे तो राखी बांधेंगे वहां पे माशाल्लाह, क्या कहने।
1: और
0: पलवान साहब ने फोन किया, ये पहले मुझे बता कि पलवान साहब ने फोन किया कि नहीं किया।
1: पलवान साहब ने किया था।
0: बच गया फिर, इसका मतलब बच गया, बच गया।
1: फोन मैंने पकड़ा, उसने बोला मेरी बहना किधर
0: है। वाह,
1: ये रही तेरी बहना।
0: हाँ ये रही तेरी बहना, ठीक है, हम जाने वो जाने।
1: फोन उसको पकड़ा दिया, फिर वो दोनों ने बातचीत।
0: वाह जी वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ये अच्छी, ये देखो ये खूबसूरती होती है, हम याद करते हैं, देखो ये होती है खूबसूरती होती है माशाल्लाह। पलवान साहब सुन रहे हैं, और पलवान साहब आपको पता है बिजी है, बिजी, वो लाइफ बिजी होगी उनकी।
1: वो बिजी है, वो काम पे बिजी है ना बेचारा।
0: हाँ, बेचारा नहीं है, ठीक है, बेचारा नहीं है वो।
1: वैसे वैसे तो हर साल करता है।
0: नहीं नहीं नहीं, हम सब करते हैं माशाल्लाह। आपकी देखो, आप इस प्यार करते हैं, आप सब आपके साथ प्यार करते हैं और अच्छा ही लगता है माशाल्लाह। और रक्षाबंधन के लिए हमारी प्यारी बहना ने याद किया है, सितारा साहिबा ने, वो उन्होंने आपके लिए शुभकामनाएं दुआएं दी हैं और बहुत ही उन्होंने मुबारकबाद दी आपको।
1: सबको मेरा सलाम। तो वो तो पहलवान साहब तो जब मैं उधर बनली में था, वो घर पे आता था ना।
0: वाह जी वाह, क्या कहने। देखो आप है खुद अच्छे हैं माशाल्लाह, देखो आपको सब प्यार करते हैं, खलूस मोहब्बत है आपके साथ, फैमिली है आप हमारी, इसलिए हम ये शामिल होते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, तो सबसे पहले सलाम बोल दूं हमारा शकील भाई को,
0: जी जी,
1: मीर भाई को, मोहम्मद हनीफ भाई को, शाजिद भाई को, वाजिद भाई
0: जी,
1: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई को, आपका लाडला,
0: हमारा लाडला आजकल गायब है, अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं कहाँ चला गया।
1: वो कुछ बीमार था ना फैमिली में, तो इसी वजह से होगा बिजी।
0: हाँ वो बिजी भी है, और वहाँ पे इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट हमारे जो उस शहर में वो इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट बंद कर दिया उन्होंने, तो वो किसी वजह से तो वो बंद हो गया, इस वजह से वो शायद उनकी लाइन कनेक्ट नहीं हो रही या इंटरनेट नहीं होगा या कुछ सिलसिला होगा, अल्लाह खैर ही करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं,
1: जरूर दुआ करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमारा सज्जद पहलवान है
0: जी,
1: इकबाल भाई है, शहीद एहसान भाई है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब
0: जी,
1: हमारा रफी साहब,
0: वाह,
1: हमारा परवेज खान भाई,
0: हमारी
1: बहना खान है, फिर आशिया जी है, अतिका जी है
0: जी,
1: सलीना है
0: जी,
1: हमारी शर्मा जी है, अखिल सनवान,
0: हाँ जी, वो प्रोग्राम सुन रही है, प्रोग्राम सुन रही माशाल्लाह जी,
1: रेखा जी है, अमीदा जी है, सितारा जी है, मिस्टर मिसेस पटेल है, सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो ये है अहमद कुमार का गाना है
0: जी जी जी,
1: ए रात ए चांदनी फिर कहा जा दिल की सास का, ए रात ए चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की सास का, ए पैरों की सांसों पे सोई सोई चांदनी, पैरों की सांसों पे कोई कोई चांदनी, तेरे ख्यालों में कोई कोई चांदनी और थोड़ी देर में सब पिलोट जाए।

0: वाह
1: सुन जा दिल के रास्ता, रात ए चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल के रास्ता,
0: क्या कहने
1: तेरे रोके हो तू पे धीमा धीमा राजे, रोके हो तू पे धीमा धीमा राजे, सीधी हवाओं में ठंडी आ गए।

बदल के देख ले तूने दे अब धड़कनों की जबान, सुन जा दिल के दास्तां, तेरा ते चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल के दास्तां, जाती बहारी जवानियाँ, जाती बहारी जवानियाँ, तारों की छांव में टहले कहानी।

0: काफिले बहार के आ जा अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल के सासुरा रात ए चांदनी दिल कहा जा दिल के Thank you.
1: Beautiful, beautiful, beautiful. Wow, wow, wow. क्या गीत आपने चुना मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत। और आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे अली भाई हैं वो शुक्रिया अदा करें, और हमारे रेखा जी हैं और मेशा हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने गाने को पसंद किया, इंजॉय किया और बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब गीत था और फिल्म थी जाल और क्या कहने, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी भाभी जान कौन सा गीत लेके आ रही है?
0: सबको मेरा सलाम और थैंक यू।
1: वेलकम, यू आर वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम।
2: थैंक यू भैया।
1: बाबी जान हाउ आर यू, आर यू गुड?
2: हाँ थैंक यू भैया, मैं ठीक
1: हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, A1 हूँ, A1।
2: थैंक यू, ऐसा ही आपको हमेशा रखे दो।
1: आमीन आमीन आमीन आमीन।
2: चलो चलो मैं सबको सलाम बोल दो।
1: जी जी, गो हेड गो हेड।
2: हमारा शकीब भैया
1: वाला
2: जी, मोहम्मद भैया है
1: जी,
2: भैया है, अजीत भैया भी है
1: जी,
2: चौधरी भैया भैया
1: जी,
2: सज्जाद कलवन भैया ने फोन किया था।
1: जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
2: जैसा भी है
1: जी,
2: लेकिन मेरे को रक्षाबंधन में हमेशा
1: फोन करता है। वाह जी वाह, क्या कहने। देखो वो हमारा भाई है ना, हमने उसको डांटा है, उसको हमने कहा कि काम कर कर किया करें और अच्छा काम किया करें, तो देखो वो अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह।
2: पल्ली में तो मेरे घर पर हमेशा आता
1: था। वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने,
2: कभी नहीं भूलता।
1: वाह जी वाह, बहुत अच्छा। और हमारे माशाल्लाह आपको सलाम पेश करते हैं, हमारे महबूब लाइफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको सलाम पेश करें और उन्होंने आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। सिमी जी ने स्पेशली आपके लिए फोन किया है, उन्होंने दुआएं दी है रक्षाबंधन की भी, और बड़े ही खूबसूरत उन्होंने बड़ी खुशी मनाई है माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह।
2: रक्षाबंधन का मीनिंग भैया भाई बहन का प्यार होता है,
1: भाई बहन भाई का प्यार होता है, और वो जो दागा नहीं होता है वो प्यार होता है, वो खूबसूरती है। ये ना सोचे वो सिर्फ दागा ही है, वो उसमें बहुत कुछ है, उसमें जो है ना वो
2: हमारा हिंदू धर्म में सब भाई, हम जैसा रेडियो में सब आता है, सब मेरा भाई है।
1: हाँ माशाल्लाह, क्या कहने, ये बहुत खूबसूरत है।
2: हम हमेशा दुआ करते हैं,
1: हमेशा ही दुआ करते हैं। वाह जी वाह वाह वाह वाह, वो जो डोरी है ना, वो प्यार मोहब्बत, वो डोरी है, वो प्यार है मोहब्बत है उसमें।
2: दादा लगाते ना भैया
1: जी,
2: इसलिए मीनिंग होता है,
1: बहुत मीनिंग होता है, हमें पता है भाभी जान। और हमें अच्छे लगता है जब भी
2: देना देना नहीं है।
1: हाँ जी जी जी, सिर्फ लड्डू लड्डू बांटते हैं और वह लड्डू देते हैं एक दूसरे को, और यही खूबसूरती है। वो तोहफा दे देना कोई बात नहीं है, और ना देना कोई बात नहीं है जी।
2: जितना भैया रेडियो में आता है सबको मेरा तरफ खूब खूब रक्षाबंधन।
1: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बेना, बहुत अच्छा लगा।
2: पापा सुखी भैया है
1: जी, माशाल्लाह। देखो आपको लिए हमारे शहीद एहसान है, वो आपको सलाम पेश करें, उन्होंने मुबारकबाद दी आपको।
2: इसको भी मेरा खास, जितना भैया आता है रेडियो में
1: जी,
2: सबको मेरा तरफ से खूब खूब रक्षाबंधन का बधाई
1: जी।
2: मेरा भाई जितना लोग आते हैं
1: जी,
2: सबको खुद हमेशा खुश करते हैं,
1: माशाल्लाह। और हमारे साजिद भाई हैं फ्रॉम शफीर से, साजिद हुसैन जी हैं, वो आपको रक्षाबंधन की दुआएं दे रही हैं, दे रहे हैं, और उन्होंने आपको याद किया है, बड़े अच्छी तरह याद करते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है जी।
2: शफीर वाला ने,
1: शफील वाला जी जी, शफील वाला, एक शफील वाला है और एक ग्लासगो वाला है, दो है ना साजिद भाई है ना, तो एक जो ना शफील वाले हैं वो हमारे सुपरस्टार हैं, वो आपको उन्होंने, आप उनको जानते हैं जी जी,
2: बहुत अच्छा गाना गाता
1: है, ऐसे ही ऐसे ही आ जाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है,
2: कभी वो टाइम मिल रहा
1: है जी जी जी।
2: तो ये सबको मेरा खूब खूब सलाम है
1: जी जी।
2: हमारे आशिया जी, अतिका जी ने भी फोन किया था
1: जी जी,
2: इसको भी मेरा सलाम
1: जी।
2: मीना है, समीर जी है, रेखा जी है, हमीदा जी है
1: जी,
2: समझ वाला
1: जी,
2: अरे जी, सब मैं जितना जितना लोग आते हैं सबको मेरा खूब सलाम
1: जी जी।
2: तो मैं दो लाइन में हमारा जितना लोग आते हैं रेडियो में
1: जी सब भाइयों के लिए सब भाइयों के लिए
2: मेरे तरफ से मैं गा लेती हूँ।
1: हाँ जी जी जी वाह जी वाह क्या कहने।
2: रंग बिरंगी राखी लेके आई राखी बनवा ले मेरे बनवा ले कहिया राखी बनवा ले मेरे
1: वाह
2: ना मैं सोना ना चांदी के हार मांगो
1: वाह
2: अपने भैया थोड़ा सा प्यार मांगो थोड़ा सा प्यार मांगो सोना हजार मांगो अपने प्यार छुपा के लाई बहना राखी बंधवा ले मेरे राखी बंधवा ले मेरे आपके लिए
1: भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया हमें अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा
2: लिस्ट में भाई आता है सबके मेरे तरफ से खूब खूब बधाई ने खुदा हमेशा सबको खुश रखे जो जो भैया बीमार है इसको भी खुदा जल्दी जल्दी ठीक कर दे।
1: वाह जी वाह कमाल कर दिया कमाल कमाल कमाल कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोई गाना गुनगुनाना
2: अभी मैं गिद्धर के लिए गाता हूँ।
1: अच्छा और एक में एक सेकंड में आप थोड़ा होल्ड करके मैं जल्दी जल्दी एक सेकंड के लिए मैं एक मिनट के लिए मैं होल्ड करता हूँ आपको और क्योंकि मैंने छोटी सी ब्रेक करनी है और उसके बाद आप आराम से करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और यहाँ पे हमने कम टाइम चेक करना है क्योंकि लेट हो चुका हूँ और यहाँ पे
3: सनराइज रेडियो your soundtrack your time check
1: 10 minutes to 53 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan.
4: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
5: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी निका सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
4: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
5: मौका कोई भी हो लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट लीड्स रोड ब्रेडफर्ड।
4: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट हर मौके को खास।
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
6: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together, it all adds up. So come on, you lot. Search. Let's save water.
9: Sunrise and music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
10: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first

0: शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू जी जी।
1: मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मोहब्बत के वादे खुला तो न दोगे, मुझसे दामन चुरा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जा भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारी।

0: ले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। थैंक यू भैया।
1: वाह वाह, क्या कहने वे वेना जी, बाबी जान बहुत खूबसूरत, क्या कहने, वेरी नाइस। जो गाना आपने चुना है मेरा फेवरेट गीत है और बहुत ही कमाल का गीत है और जबरदस्त गीत है, ब्यूटीफुल ट्रैक। और मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी हमें गाना सुनते हैं ना, वेरी मीनफुल गाना है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं।
0: सर भैया को मेरा खूब खूब सलाम, खूब खूब बधाई।
1: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने वेना जी, आप तो मैं क्या कहने, आज जाने कमाल ही कर दिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दुआ करते हैं और ऐसे ही कायम दायम ही रहे हमारी जोड़ माशाल्लाह, हमारे प्यार मोहब्बत के खलूस के साथ माशाल्लाह ऐसे ही, और किसी की नजर न लगे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, क्या कहने,
2: देने वाले कभी गम।
1: और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे सरप्राइज सरप्राइज होगी आपके लिए थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे धमाका होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी हमारा साथ दे रहे हैं और आपके लिए सरप्राइज होगी, और कौन होंगे यहाँ पे। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का भी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। न्यूज़ ब्रेक।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: Center at 10. The captain and crew of a passenger ferry which capsized in the Mediterranean, killing at least 8 people, have been detained. Around double that number are missing after the catamaran took in water and turned over off the coast of northern Cyprus. 267 people were on board heading to Turkey. Oceanography lecturer Dr. Simon Boxall says attention will soon turn to what's happened.
5: Did it strike something and take one of the hulls out? This is the sort of vessel that wouldn't come out if it was very rough. But those seas aren't bad. It's a bit choppy, but there's nothing there that would upset a vessel of that size.
4: 7 people have been arrested on suspicion of murder after a newborn baby.

0: राइट एंड दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, और आपने गाना को पसंद किया, एंजॉय किया, एंड दैट वाज सॉन्ग बाय हमारी पापी जान ने गाना गुनगुनाया, और बड़ा ही खूबसूरत सुमित्रा जी ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीन्स से, और उन्होंने गाना गुनगुनाया हमारे गुरु जी के लिए. गुरु जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, व्हाट अ ब्यूटीफुल चॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का. और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 7 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Pavez Khan. और जिनके लिए surprise थी, उनकी line drop हो चुकी है. समझते हैं कि वहाँ पे खामोशी थी, तो उन्होंने समझा कि line drop हो गई है, तो वो चले गए हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका. इंशाल्लाह वो दोबारा फ़ोन करेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, शायद आज ही कर लें, क्योंकि उनका इंतज़ार था, वो कौन थे, और बड़ा ही हमने इंतज़ार किया उनके लिए, और बड़ा ही अच्छा लगा. शायद उनको ये महसूस हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे लाइन ड्रॉप हो गई है, क्योंकि जब यहाँ पे आप फ़ोन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे खामोशी होती है, ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉप हो गई है, तो ड्रॉप नहीं होती है लाइन वहाँ पे होल्ड किया जाता है वहाँ पे. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आई डू अपोलोजाइज टू द वंडरफुल कॉलर. और क्या कहेंगे, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. अरे मैं यहां पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूं कम है. और व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, वन एंड ओनली वन मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं. वेलकम जी एनो, खुश आमदीद कहेंगे उनको, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ आर यू सर?
2: I'm all right, alhamdulillah, आप ठीक ठाक हैं?
0: मैं फर्स्ट क्लास हूं, A1 फर्स्ट क्लास हूं. वेलकम जी आनो, खुश आमदीद, और आपके लिए ये जी वेलकम वेलकम.
2: बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी
0: जी जी. माशाल्लाह माशाल्लाह. और कैसी तबीयत आपकी मेरे भाई?
2: पिछले हफ्ते टाइम नहीं था आप लोगों,
0: मुझे पता लगा है कि आप काफी बिजी थे और आपको लाइन में भी नहीं मिली है, और इस वजह से भी. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और बाहर आ गई, हमने आपको इतना मिस किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच.
2: बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ से आपको, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
2: भाभी सेबा को बहुत बहुत मुबारक
0: जी. खैर मुबारक.
2: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
0: वाह वाह वाह माशाल्लाह,
2: फलकता जमी जिसकी परवाज है,
0: वाह,
2: वही जिन पे हमको नाज है, वही जिन पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है. परवेज खान जी, आप एक दो आवाज.
0: हाय हाय हाय हाय, सदके जावा सदके. क्या कहने जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश.
2: और ये फरमाइश करने वाले हैं, और नजर करता हूँ आपके लिए, मुबीन साहिल अमीर साइम डॉक्टर बशीर पाशा गुरु भाई बाबी सेबा माजद साहिब
0: जी,
2: उम्मीद है बाकी भी तमाम सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करेंगे. हाँ जी,
0: जी.
2: और ये जो गीत है, ये पता नहीं फिल्म के डायरेक्टर ने रफी साहब को क्यों नहीं दिया था, किस रीजन की वजह से. और ये सिर्फ लता साहिबा की आवाज में ही फिल्म में आया है.
0: जी जी जी.
2: बल्कि मोहम्मद रफी का जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ.
0: जी जी, क्यों नहीं, गो अहेड.
2: आए मेरा दिल ले गई,
0: वाह,
2: कोई आके इशारों से,
0: वाह वाह वाह.
2: हाय मेरा दिल ले गई, कोई आके इशारों से, आती है सदा उसकी मेरी सांसों के तारों से.
0: क्या कहने,
2: दिल की लगी बुझती नहीं, उनका बुलाना खेल नहीं, हाय खेल नहीं, दिल की लगी बुझती नहीं, उनका बुलाना खेल नहीं, हाय खेल नहीं, आती है मेरे दिल में।

0: के इशारों से।
1: क्या खेली?
0: क्या हुआ, बुरा हुआ, अपनी हालत क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। क्या हुआ, बुरा हुआ, अपनी हालत क्या कहिए, हाय क्या कहिए। रोते हैं गले मिल के अकेले हम बहारों से, आए मेरा दिल ले गई कोई आके इशारों से। आती है सदा उसकी मेरी सांसों के तारों से। सजदे दरे महबूब के, काम

सलाम आने लगे हैं। आया हूँ मेरे दिल भर तेरी अंजुमन में ले कर, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरे दिल में आरज़ू की एक शम्मा जल रही है, मेरे दिल में आरज़ू की एक शम्मा जल रही है, तेरे प्यार की ये हसरत मेरे दिल में पल रही है। ओ मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरत

यही इल्तिजा करूंगा आज अपने मेहरबान से, यही इल्तिजा करूंगा आज अपने मेहरबान से, मेरे लब न कह सकेंगे जिसे उम्र भर जुबान से, ओ मेरी बेजुबान नजर से।

0: मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल,
0: बड़ा मजा आया,
1: बड़ा मजा आया, बड़ा बहुत खूबसूरत
0: बातें सुनकर, बड़ी मीठी मीठी आपकी बातें, यही मुझे स्टूडियो में खींच लाते
1: हैं। वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी
1: मेहरबानी आपकी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वाओ। That was the gentleman, माशाल्लाह, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है वो दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
1: चाचा केड़ा चाचा
2: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
0: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट
3: व्हेदर यू नीड one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: राइट वेलकम बैक इन लिसनिंग योर लिसनिंग टू 93.2 एफएम और यहां पे मेरा साथ देने आशा जी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और ये जो माशाल्लाह पोएट्री करती हैं खुद लिखती हैं और वेलकम कहेंगे जी हैं कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। कैसी तबीयत है मेरे बेना की? ठीक ठाक ठीक है आपकी?
1: अल्लाह का करम
0: एहसान
1: मेरी तरफ से सब सुनने वालों
0: को माशाल्लाह। वालेकुम जी।
1: और आज संडे का दिन है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था तो मुझे
0: माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बेना आती हैं माशाल्लाह और आजकल माशाल्लाह खूबसूरत है, शायरी लिखती है लिख रही हैं माशाल्लाह और पोइट्री करती हैं, बहुत खूबसूरत होती है और सब आपकी शायरी को पसंद करते हैं इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। जी
1: जी, वक्त जाया करने से पहले हम शायरी की तरफ जाएं क्योंकि वक्त आपको।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी जी, हेड गो हेड। जी जी,
1: ए जिंदगी बताओ ठहरी या तेरी नगरी से आप कुछ करें।
0: वाह,
1: सितम जिंदगी ने कुछ ऐसे किया कि कब कम बची गया बस हम जिंदा रहे।
0: बहुत खूब।
1: वो आप क्या चले हम भी साथ चल सके, खाक ही बाकी रही हम कहीं ना रहे।
0: वाह,
1: वक्त ने चाल ऐसी चली कुछ याद ना रहा, साथ भी कहीं खो गई सब कुछ भूल लीजिए।
0: वाह,
1: एक आस में जिंदगी गुजरी कभी बुखार आएगी किस्मत पर चाय का ले।
0: बेना पीछे की आवाज आ रही है, उसको आवाज को बंद करेंगे प्लीज, थोड़ी बेहतर हो जाएगी आपकी आवाज। जी
1: जी जरूर।
0: जी जी जी, क्योंकि वो पीछे से आवाज आ रही है और आप ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें भी डिस्टर्ब। जी
1: आई थिंक वॉल्यूम थोड़ा
0: ज्यादा था। आप स्पीकर लगाया हुआ है, स्पीकर को उसको उतार दें। जी जी,
1: आप ठीक है?
0: आप ठीक आ रही। जी जी,
1: आप वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था ना।
0: जी जी,
1: चलो सुनाते हैं। वो आप क्या जले हम भी साथ जलीजिए, आपकी बाकी रही हम कहीं ना रहे।
0: बहुत खूब।
1: वक्त ने चाल ऐसी चली कुछ याद ना रहा,
0: बहुत खूब।
1: रात भी कहीं खो गई सब कुछ भूल लीजिए।
0: वाह,
1: एक आस में जिंदगी गुजरी कभी बहार आएगी, किस्मत पर छाए काले बादल ही रहे।
0: बहुत खूब।
1: अपने ही कंधों मार अपनी रूह का जनाजा उठाकर सरे बाजार बस हम सब के साथ चलते रहे।
0: वाह,
1: लोगों की भीड़ तो चारों तरफ रही, जरा में क्या हम ही बस सब में तन्हा रहे।
0: आहा, क्या कहने,
1: ये दुनिया एक मुसाफर गाह है।
0: आहा,
1: यही एक बात समझ में आई,
0: बहुत
1: कौन किसके साथ रहा कौन अपने साथ निभाई।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: हजारों सिसकियां हर रोज दम तोड़ती रही, अपने ही आंसू पी कर हम बस मुस्कुराते रहे।
0: वाह,
1: यही एक जमाने की फितरत रही, मरे हुओं को लोग मार कर सवाब समझते रहे।
0: ओए होए होए, क्या कहने,
1: मोहब्बत करने की सजा यूं देते हैं, चिलते चेहरों को जिंदा दरगोर करके लोग बस हंसते रहे।
0: हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जाने कातिल के भी अजीब तमाशे देखे, पहली सफों में खड़े होकर खुदा से सुकूने कल्ब की दुआ मांगते
0: हैं। आय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: आज की शायरी थी,
0: बहुत ही कमाल की शायरी आपने की है और बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज आपका, बड़ा प्यारा अंदाज है और बहुत अच्छा लगा और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे अली भाई हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह और बहुत शुक्रिया आपका भी। ओल्ड रूम से हमारे चौधरी वाजिद भाई हैं वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप आई हैं, तो बहुत खूबसूरत शायरी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ। और आज हमारा प्रोग्राम जो ना मुकम्मल हो चुका है क्योंकि वो आ गए वो छा गए माशाल्लाह और महफ़िल लूटने के लिए आपको पता है कौन आया, और ये आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
2: बस शुक्र अल्लाह का।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र, आपकी भैया की दुआ है माशाल्लाह। जी
2: ये तो पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: केतन भाई हैं, सुमित्र बहन है।
0: जी
2: हमारे डॉक्टर मलिक साहब है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है।
0: जी
2: हकीका साहब है।
0: जी
2: जल्ला साहब और भी जितने सुनने वाले हैं सबको मैं तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: थोड़ा सा इसलिए मैं सबका नाम ले सका।
0: जी
2: वो एक गजल है अय्यूब कासिम लिखने वाले हैं।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: कहते हैं जख्म तुमने जो दिए उनकी दवा कौन करे।
3: हाय हाय हाय मुकर्रर जी मुकर्रर, वाह वाह वाह।
2: जख्म तुमने जो दिए उनकी दवा
3: कौन करे, वाह।
2: रास तनहाई के आने की दुआ कौन करे।
3: हाय हाय क्या कहने।
2: अपनी गलती का ना एहसास कभी हो जिसको,
3: वाह।
2: अपनी गलती का ना एहसास कभी हो जिसको, ऐसे नादान से तकरार भला कौन करे।
3: आय हाय हाय हाय वाह वाह वाह
2: शुक्रिया,
3: वाह।
2: मैं जो गुमराह रकीबों की किसी साजिश में, उनकी दिल सोज तबाही का पता कौन करे।
3: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: खून के साथ तजारत तो करे इंसान के, खून के साथ तजारत तो करे इंसान की, अब यकीन ऐसे मसीहा का भला कौन करे।
3: वाह जी वाह क्या कहने।
2: तो शेर अर्ज है।
3: जी जी जी अरशाद अरशाद।
2: जवान होते ही जो माँ बाप की नसीहत न माने,
3: आई वाह।
2: जवान होते ही जो माँ बाप की नसीहत
3: न माने,
2: ऐसी औलाद से उम्मीद वफा कौन करे।
3: कौन करे आई हाय क्या कहने।
2: कत्लो खून झूठ दगा आम हो जिस कौम में, कत्ल खून झूठ दगा आम हो जिस कौम में,
3: वाह।
2: बात हक की वहां कहने की खता कौन
3: कौन करे। आय हाय हाय हाय हाय बहुत ही गहरा बहुत ही गहरा, वाह।
2: वक्त का तकाजा है अब अयूब बगावत कर लो,
3: वाह।
2: जुल्म जालिम का शब रोज कौन करे।
3: वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब, वाह बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। एक और हो जाए, और क्योंकि हमारे जो सुनने वाले वो आपका इंतजार करते हैं, एक और हो जाए।
2: बदर आलम खान आजमी इनका नाम है।
3: जी जी
2: बदर आलम खान आजमी
3: आजमी जी।
2: जिंदगी का ढंग ये कैसा है तेरे शहर में,
3: आई वाह।
2: एक रोता है तो एक हंसता
3: है, वाह।
2: हाथ में पत्थर लिए एक भीड़ है हर मोड़ पर,
3: वाह।
2: इन दिनों मेरा बहुत चर्चा है तेरे शहर
3: में, वाह वाह वाह वाह बहुत खूब।
2: मेरे सीने में सुलगता है कोई आतिश पिशां,
3: वाह।
2: हर कदम पर दिल मेरा जलता है तेरे शहर
3: में, वाह वाह वाह वाह।
2: जिनको आंखें हैं जिनकी आंखें हैं उन्हें कुछ भी नजर आता नहीं,
3: बहुत खूब।
2: देखने वाला मगर अंधा है तेरे
3: शहर में, वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने।
2: जब कोई चढ़ता है ऊपर खींच लेते हैं उसे, जब कोई चढ़ता है ऊपर खींच लेते हैं उसे, एक गिरता है तो एक उठता है तेरे
3: शहर में, वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: जल रही है धीरे धीरे दिल के रिश्तों की मिठास,
3: वाह।
2: कौन है जो आग भड़काता है तेरे शहर
3: में, वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: आस्तीनों में है खंजर फिर भी मिलते हैं गले,
3: आहा वाह।
2: आस्तीनों में है खंजर फिर भी मिलते
3: हैं गले,
2: दोस्ती का नाम पर धोखा है तेरे शहर
3: में, वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने, वाह।
2: पांव से माजूर हो जाता है खालिस और खरा, पांव से माजूर हो जाता है खालिस और करा, हाँ वही चलता है जो खोता है तेरे
3: शहर में, वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: जंगलों में भेड़िए को भेड़िया खाता नहीं, जंगलों में भेड़िए को भेड़िया खाता नहीं, आदमी को आदमी खाता है तेरे
3: शहर में, वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने।
2: आंधियों में बुझ गए हैं शहर के सारे चिराग,
3: वाह।
2: आंधियों में बुझ गए हैं शहर के सारे चिराग, एक रोशन बस तेरा तेरा परवेज भाई है शहर में,
3: आए हाय आए हाय वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब।
2: आंधियों में बुझ गए शहर के सारे चिराग,
3: वाह।
2: शहर
3: में क्या वाह बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और इन आपने कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, महफिल आपने लूट लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।
0: और यहाँ पे हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुल क्यूम साहब, हमारा साथ दे रहे हैं फ्राइजिंग हॉल से।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, you that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: गलियां गलियां घूमी ते पैरें नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
8: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
7: चाचा केड़ा चाचा?
8: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
7: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
8: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सनराइज एंड योर नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, अब्दुल कय्यूम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप हमारे उस्ताद हैं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये पहले
1: आपका तो पूरी दुनिया सुनती है, हमें तो कोई
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात ना करें कि आप हमारा साथ हैं, पूरी दुनिया सुन रही है आपको भी माशाल्लाह, पसंद करते हैं माशाल्लाह। और मुझे ये पहले बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है और कैसी है आपकी आंखें, ठीक है?
1: नहीं, वो ऑपरेशन हो गया, ठीक ही है तकरीबन, अब कुछ टाइम लगेगा ना।
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अभी तो 3-4 रोज हुए।
0: अच्छा अच्छा, एहतियात करनी है, बड़ी एहतियात करनी है, ठीक है ना, एहतियात बहुत जरूरी है।
1: लेकिन आपके प्रोग्राम में तो मैं आंखें बंद करके भी
0: वाह वाह वाह वाह, सलूट आपके लिए, और ये आपके लिए, ये आपके लिए। वाह जी वाह, क्या कमाल बात की आपने, अच्छी गुफ्तगू की। जी जी
1: वाह। तो सबसे पहले तो सलाम अर्ज करूंगा जो इस वक्त घरों में, बाजारों में,
0: जी जी,
1: दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में, जहां कहीं भी ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, मैं सबको सलाम कर अर्ज करता हूं।
0: जी जी माशाल्लाह।
1: तो वो कल हमारे कजन है ना, वो हमारे घर आए थे, फारूक गनी और उनकी अहलिया, वो आए थे, तो वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम सुनते रहती हैं, तो
0: माशाल्लाह
1: सोचा कि
0: माशाल्लाह
1: आज ये गीत उनके ही नाम,
0: उनके लिए, उनके थोड़ा जो रेडियो को हो रहा है, या रेडियो की आवाज ऊपर कर लो, क्या हाल है?
1: जी जी नहीं, उनके कान बहुत पतले हैं, वो
0: सुन लेते हैं। चलो ठीक है जी, जबरदस्त।
1: वैसे मेरा गाना तो दूसरा मुंह का जायका तब्दील करने के लिए।
0: वाह जी क्या कहने, वाह।
1: साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से तुझसे मिलने दिया बेकरार था, दिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब आते हैं जरा गीत की तरफ। ये फिल्म सलाम मोहब्बत से,
0: सलाम मोहब्बत जी, वाह जी वाह।
1: मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है रे, दिन रात महकते रहने के कलियों ने अदा तुझसे पाई, ये चांद जो घटता बढ़ता है, दर असल है तेरी अंगड़ाई, तेरे असल है तेरी अंगड़ाई, मैं तुझे अगर एक फूल कहूँ, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये, तेरा हुस्न हमेशा कायम है, दम भर के लिए रंगीन है ये, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये, ये आंख अगर उठ जाए तो हर एक सितारा सजदा करे, आ जाए कहीं हो तू पे ऐसी बिजली भी तड़प कर, आहें बरे बिजली भी तड़प कर, आहें बरे, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये, ये जुल्फ अगर खुल जाए तो रातों के जवाने शर्माए, ताजा इंतजार का आलम क्या कहिए, बहता हुआ दरिया थम जाए, बहता हुआ दरिया थम जाए, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये, दिन रात महकते रहने के कलियों ने अदा तुझसे पाई, ये चांद जो घटता बढ़ता है, दर असल है तेरी अंगड़ाई, दर असल है तेरी अंगड़ाई में तुझको अगर एक फूल कहूँ, मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तोहीन है ये।
0: होई होई होई होई होई होई, क्या कहने क्या कहने, इतना खूबसूरत गीत और आपकी खूबसूरत आवाज़, और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ मेरे भाई, आपको हवा के दोष में, क्या कहने मेरे भाई, बहुत खूबसूरत,
1: बहुत शुक्रिया,
0: वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, और
1: वक्त वक्त को धक्का देने वाली बात,
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना किया करें, ऐसी बात ना किया करें, ऐसी बात ना किया करें, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और जो गाना पहले आपने गुनगुनाया था,
1: हमारे कजन जो है ना वो खुश हो गए, चलो
0: वो जो गाना आपने उनके लिए गुनगुनाया था वो ये गाना था।

0: क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने मेरे भाई का, क्या गाना चुन के लेके आते हैं और बहुत खूबसूरत कमाल ही करते हैं, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे दिल अजीज, हमारे दिल जानी अब्दुल कयूम साहब, ऑल वे फ्राइजिंग, और कमाल ही करते हैं और आज भी कमाल कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी हमें अच्छा लगता है जब ये शिरकत करते हैं, इनके पास जो नॉलेज है ना गानों का, बिलीव करें हम ही इनके निशेदाई हैं, उनके दीवाने हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है जब ये फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है, हमारे दिल अजीज़ हमारे बहुत ही प्यार करने वाले हैं, हमारा शहजादा है और बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है। शुक्रान भाई, वेलकम जी आनो, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास में A1 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुना कासी, कैसे तबीयत आपकी?
1: मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2-3 वीक से मैं कोशिश कर रहा था कि परफॉर्म वेल करने की, लेकिन कुछ ऐसी
0: मतलब, फिर भी आपने इतना खूबसूरत गाना गुनगुनाते हैं, शेर शायरी करते, कमाल की करते, कमाल की,
1: माशाल्लाह।
0: आपके चाहने वाले पूरी दुनिया में होंगे, दुनिया में क्या कहने।
1: सर जी, आपका जो प्रोग्राम है माशाल्लाह, आपके जो लिसनर्स हैं, आपके जो पार्टिसिपेट करते हैं माशाल्लाह, उनका तो मैं फर्दन फर्दन नाम नहीं जानता
0: जी,
1: लेकिन अतीका जी माशाल्लाह मैनचेस्टर से, जो उनका तो माशाल्लाह प्रोग्राम ही बड़ा मजे का था, उनकी वो जो मतलब शेर व शायरी करती हैं
0: जी जी,
1: वो तो कमाल करते हैं। नसीम मंसूर साहब
0: जी,
1: मतलब बाबी जान हमारे, या जितने भी मतलब हमें अपने मोहम्मद रफी साहब हैं जो,
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहें,
1: उनका तो माशाल्लाह उनका तो जोड़ ही नहीं है ना,
0: उनका तो जोड़ ही नहीं, क्या कहें। वाह जी वाह,
1: मैं कल बैठा हुआ था एक जगह में, बात हो रही थी, कहते थे कि वो एक चंगी नूह होवे ना, तो वो सारे रिश्तेदारों को
0: गठिया करनी वाह वाह चंगी नूह है वाह।
1: मैं क्या सर, जेडे पीके भाजे ना,
0: आपको पता है कि न्यू आजकल मिलना भी बड़ा मुश्किल है ना, ये बड़ा क्या हाल है, अच्छी न्यू आज मिलना बड़ा मुश्किल है आपने न्यू मिला दिया, ओए होए। एक मेरा भाई है, वो कहता है कि आप माली का काम करते हैं, आप माली हो गए। मैंने कहा अच्छा, ये भी अच्छी बात, आपने कहा कि न्यू, तो उन्होंने कहा कि माली अच्छी बात है मेरे भाई, हम कोशिश करते हैं।
1: आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो समझिए कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बंदे के कुछ गुम गुम सा रहता है,
0: हाँ,
1: हाँ, जब तक आपके प्रोग्राम में शिरकत ना कर ले, आप बात ना कर ले, वो बंदा गुम गुम सा रहता है।
0: हाय सदके जमा, ये मेरा भाई है, एलो एलो, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी जी।
1: तो सर जी शेर है जी, मैंने ये तस्वीर बनाई,
0: मैंने ये तस्वीर बनाई,
1: आप अधूरी रखी है,
0: ओए क्या कहने,
1: जितनी कुर्बत कदर ना खो दे,
0: वाह क्या कहने,
1: उतनी दूरी रखी है,
0: नहीं दूरी रखी है, आए हाय हाय हाय, क्या कहने,
1: ख्याल तुम्हारा जब भी आए,
0: आहा
1: मुझको जीना पड़ता है,
0: आए हाय,
1: तुमने मेरे मरने में भी,
0: आहा
1: क्या मजबूरी रखी है,
0: ओए ओए ओए ओए ओए, ठोको जी ठोको ठोको ठोको, वाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत, वाह जी वाह, क्या कहने, ब्यूटीफुल, वाह
1: सर जी, सरप्राइज आपके लिए,
0: सरप्राइज मेरे लिए, वाह वाह वाह, मैं इंतजार में था कि कौन सी सरप्राइज होगी, मेरे भाई के ने कहा कि मैं सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, मैंने कहा वाह क्या कहने,
1: मेरे शौक रने,
0: हाय हाय हाय हाय,
1: दरबार तेनु,
0: वाह
1: जा वेख मेरा इंतजार आ जा,
0: वाह वाह वाह,
1: शौक रने एतबार तेनू,
0: वाह
1: आ जा वेख मेरा इंतजार आ जा, एवें लड़ने बहाने लबनाए,
0: वाह
1: तू सोच ना है ते तमगार आ जा, मेरे शौक नहीं सुखी वसना जे तू चौला है, मेरे गाले आए इस जहान अंदर,
0: वाह

0: Beautiful.
1: जिथे बैठ देने सितम दार आ जा मेरे शौक दनई एतबार तैनू आ जा वेख।

0: इथे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने मैं खाने विच मस्तियां ही मस्तियां ने होशिकर बन के खुशियार आ जा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आ जा वेख मेरा
1: आपकी थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज बड़ा प्यारा और कोई भी गीत हो कोई भी शायरी हो कमाल करते हैं मेरे भाई कमाल कमाल
2: बहुत शुक्रिया सर जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे शादाबाद रखे ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली मेरे भाई ठीक है ना थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वाओ That was amazing caller और कमाल किया इन्होंने और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगा और यहाँ भी हमने करना है जल्दी जल्दी करेंगे टाइम चेक करेंगे कॉलर्स काफ़ी हैं और टाइम कम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक
3: Sunrise Radio Your soundtrack, your time check.
1: My time in the studio is 44 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the power of his gun. Yeah, we'll keep it locked.

0: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunday Radio 103.2 FM. और यहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम हमारे उस्ताद हैं और माशाल्लाह आगे हैं और माशाल्लाह और हमारे बहुत ही खूबसूरत एम खान जी हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और इन्होंने होल्ड भी किया और हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, वो हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज की इस आज की रात की निस्बत से
1: माशाल्लाह सुभानअल्लाह
2: वाला इस महीने की बरकत से आप समेत जितना साहब जितने सुनने वाले हैं, अल्लाह अगले सत्र सबको दिमागी जहनी कल्बी सुकून और किसी का मुताज ना करे।
1: आमीन आमीन सुम आमीन हक आमीन।
2: एहसान फरमाए थे, एहसान के ही अलामा इकबाल ने जो फरमाई है, अलामा इकबाल क्या सुनाते हैं
1: जी जी।
2: तेरे एहसान का
1: माशाल्लाह
2: नसीबे सुबह को इकरार था

0: जा तो बूढ़े आदमी की आवाज हो आगे
1: को, को, को, को, को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साथ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी।
0: तुझ पे बरसता है शबनम दीदागरिया मेरा,

0: आगे मियां साहब का अपना मकाम,
1: अपना मकाम है माशाल्लाह जी।
0: ये जो पहले दो शेर हैं
1: जी जी अर्शाद,
0: ये लाख आदमी में से या दो कई लाखों में से एक आदमी पत्थर की हकीकत को समझता है।
1: हाय हाय हाय, क्या
0: कहता जो को जिस्मानी नब्ज़ देख कर कह सकते हैं इसको फलां बीमारी सर्दी या गर्मी है।
1: जी जी,
0: फरमाते हैं जो पत्थर की पिछाड़ रखने वाला उसको भी अल्लाह ने बड़ा हिकमत
1: दी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ए नारी एक पत्थर अंदर जोड़ गई विच जोड़ी इलम उदे विच कख ना पुला, इलम उदे विच कख ना पुला ओ सब मालम बिन लोड़ी सनत सनत दुज अनत न लभदा नजर करो जिस जाई तन ओ कादर सर जनारा जिस सब चीज बनाई जे एक मच्छर दा पर पजे तोड़े जो जग लगे हर गिज रास न होंदा मुड़ के ज्यों कर आहा अगे इतना कम नहीं ओ दानश मंद सियाने
1: माशाल्लाह
0: हिकमत पाक हकीम सचे दी कौन कोई सब जाने।

0: वहद ला शरीक सिफता नाल सिहापे रब जबार कहार सुनिंदा ओ भला इस बाबू ऐसतार गफार हमेशा रैम रैम उम्मीद जुनाबू बादशाती पीक मुगावे तख्त भावे खाई कुछ परवाह नहीं घर उस दे दायम बे
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जाकल्लाह खैर बहुत बहुत शुक्रिया खैर आप आए और इतनी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया खैर अपना ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे एम खान जी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू महबूब भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करा मैं सॉरी हूँ टाइम बहुत ही कम है आवर का प्रोग्राम का और आप अपना जो गाना लेके आए शेर लेके आए क्या लेके आए हमारे लिए क्योंकि आम इंतजार में थे कि हमारा भाई आएगा
2: कोशिश कर रहे थे लेकिन काल बहुत दिन पे मिल
1: जी जी माशाल्लाह
2: सभी सामीन के नाम और जितने भी साथी आए सभी के नाम
1: माशाल्लाह
2: सुन रहे थे उन्हें भी
1: जी
2: और चौधरी रुखसार हैं चौधरी मुजफ्फर हैं
1: जी
2: साहब हैं बाकी जितने भी साथी हैं सभी के नाम
1: जी
2: शायरी है
1: जी जी माशाल्लाह
2: शायर लिखता है
1: वाह वाह क्या लिखता है
2: गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट सजा के मिलते तो बात बनती
1: क्या कहने
2: गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट सजा के मिलते तो बात बनती वो चांद चेहरे से काली जुल्फें वो चांद चेहरे से काली जुल्फें हटा के मिलते तो बात बनती
1: क्या कहने
2: गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट सजा के मिलते तो बात बनती वो चांद चेहरे से काली जुल्फें हटा के मिलते तो बात बनती
1: हाय हाय
2: मुझे भी खुद पे गरूर होता मुझे भी हासिल सुरूर होता
1: हाय हाय
2: मुझे भी खुद पे गरूर होता मुझे भी हासिल सुरूर होता अगर वो आंखें से रोज मुझको पिला के मिलते तो बात बनती

0: दबा के मिलते तो बात बनती।
1: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
0: अगर वो दांतों में सुर्ख आंचल दबा के मिलते तो बात बनती, गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट सजा के मिलते तो
1: बात बनती। आया है, क्या कहने,
0: गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट सजा के मिलते तो बात बनती।
1: वाह।
0: और चांद चेहरे से काली जुल्फें हटा के मिलते तो बात बनती।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने।
0: वो चांद चेहरे से काली जुल्फें हटा के मिलते
1: तो बात बनती। हाय हाय हाय हाय, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। और महफिल मुकम्मल होगी, हमारे कंप्लीट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अतिका साहब फ्लश कर रहे हैं, डॉक्टर मलिक साहब फ्लश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। आपके शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपका, शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया।
1: देखो वो आपका इंतजार करते हैं और आपका भी इंतजार करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया
0: आपका, सभी का बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करने कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया। और व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉल माशाल्लाह इन टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और ये आप सब के लिए।
2: अभी मेरे दिल में ख्याल आता है
1: आहा
2: कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती
1: आए हाय
2: तो शादाब हो भी सकती थी
1: आए हाय।
2: ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी
1: आहा।
2: मगर ये हो ना सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: गुजर रही है कुछ इस तरह।
1: और यहाँ पे हमने इसको रोकना है क्योंकि हमारा साथ दे रहे एफ रहमान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन करें अभी जाके टाइम मिला है
1: थोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। और जो भी आपके पास है जो अल्फाज है कह दें, और क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी
3: माशाल्लाह, हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा और
1: माशाल्लाह
3: दस रहा। बहुत मेरे दिल था कि मैं हाजिर हूँ लेकिन बिजी बहुत रहा, तो
1: माशाल्लाह
3: जरूर जरूर
1: इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आज़री लगाने का कि आज़री लगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और बहुत बहुत शुक्रिया और सबका शुक्रिया अदा करना क्योंकि हमारे एफ रहमान साहब ने उन्होंने माशाल्लाह फ़ोन किया, आज़री लगाई है। और सिमी जी आप भी आज़री लगा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों में, जो भी बहन भाई साथी दोस्त बाबा अजीज़ आए, सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया। और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको हवा के दोष में सलाम पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच है। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते ऑन वेडनेसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स ऑफ 8 एंड 11 वेयर वी गोना बी हैविंग पार्टी इन द स्टूडियो एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़ एंड शब खैर।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।